0: से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
2: संघर्ष के बीच एक एहसास जो हमें मजबूत बनाता रहा, यह महापुरुषों की अनकही प्रेम गाथा।

साथियों, बदलाव हथियार से नहीं विचारों और सेवा की शक्ति से भी लाया जा सकता है। जिस गांव में गांव, गरीबी और अंतिम व्यक्ति की भागीदारी हो तो वही सच्चा विकास है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, आध्यात्मिक चिंतन और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे को लेकर।
0: जी हाँ,
1: आचार्य विनोबा भावे का नाम भारतीय इतिहास में श्रोता साथियों एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाता है जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने प्रेम, अहिंसा, त्याग, सेवा और लोगों के बीच सीधे संवाद को अपना माध्यम बनाया। उनका जीवन जागृति जी हमें यह सिखाता है कि समाज में बड़े बदलाव केवल सत्ता या कानून से नहीं बल्कि लोगों के सोच और आपसी सहयोग से भी संभव है।
0: बिल्कुल अंजलि, सर्वोदय के पथ पर चलकर समाज में समानता और मानवता का संदेश देने वाले महान संत आचार्य विनोबा भावे के बारे में अगर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो भारत की धरती ने समय समय पर ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने विचारों, त्याग और कर्मों से समाज को नई दिशा दी है।
1: बिल्कुल,
0: आचार्य विनोबा भावे ऐसे ही महान संत, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। श्रोताओं, उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा, सेवा, ग्राम स्वराज और सामाजिक समानता के लिए समर्पित कर दिया। वे महात्मा गांधी जी के प्रमुख आध्यात्मिक अनुयायियों में से एक थे और उन्होंने गांधी जी के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
1: बिल्कुल,
0: विनोबा भावे के बारे में बताएं तो विनोबा भावे का सबसे प्रसिद्ध योगदान भूदान आंदोलन था। उन्होंने देश भर में पैदल यात्रा करके भूमिहीन किसानों के लिए जमीन दान करने की अपील की थी। उनकी प्रेम, करुणा और अहिंसक विचारों से प्रभावित होकर अनेक भू स्वामियों ने अपनी भूमि का कुछ हिस्सा गरीबों को देने का संकल्प लिया और इसी कारण उन्हें भारत के इतिहास में भूदान आंदोलन के प्रणेता के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गांगोड़े गांव में हुआ था। उनका मूल नाम विनायक नर हरि भावे था। बचपन से ही वे अध्ययन, चिंतन और आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि रखते थे।
0: बिल्कुल,
1: उनका परिवार धार्मिक और संस्कारवान था। माता के विचार का उनके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ा। बचपन से ही जागृति जी उनके भीतर सादगी, त्याग और सेवा की भावना विकसित हुई। वे सामान्य जीवन की सुविधाओं से अधिक ज्ञान और आत्म अनुशासन को महत्व देते थे। युवा अवस्था में ही उनका झुकाव आध्यात्मिक और देश सेवा की ओर बढ़ने लगा। कहा गया है कि जिस जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को सुधारना हो वही जीवन समाज के लिए प्रेरणा बनता है।
0: बिल्कुल,
1: आचार्य विनोबा भावे के जीवन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। वे गांधी जी के विचारों, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता से बहुत प्रभावित हुए। वे गांधी जी के आश्रम से जुड़े और उनके रचनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई। गांधी जी भी विनोबा भावे की प्रतिभा, सादगी और समर्पण से प्रभावित थे। विनोबा भावे ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया।
0: जी हाँ,
1: लेकिन उनकी सोच केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी। वे चाहते थे जागृति जी कि स्वतंत्र भारत में समाज के हर वर्ग को सम्मान और अवसर मिले।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने उनके जन्म और परिवार के बारे में बताया, उनके पिता का नाम नरहरि शंभुराव भावे और माता का नाम रुक्मणी देवी था और जैसे कि विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। श्रोता, उनकी माता धार्मिक, सरल और संवेदनशील महिला थी। उनके व्यक्तित्व का विनोबा भावे के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा। बचपन से ही विनोबा के मन में आध्यात्मिक त्याग और सेवा की भावना विकसित होने लगी थी। अंजलि, विनोबा भावे का बचपन सामान्य बच्चों से कुछ अलग था। उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा ज्ञान, चिंतन और आध्यात्मिक विषयों में बहुत अधिक रुचि थी। वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते और जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करते थे।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा और ज्ञान के प्रति उनकी रुचि बहुत ज्यादा थी। विनोबा भावे बचपन से ही बहुत अत्यंत मेधावी थे। उन्हें गणित के साथ साथ संस्कृत, धर्म, दर्शन और साहित्य में विशेष रुचि थी। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे श्रोताओं, बल्कि ज्ञान को जीवन में उतारने को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे।
1: बिल्कुल,
0: युवावस्था में उनके मन में आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। अंजलि, वे भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा और संतों के जीवन से प्रभावित हुए। उन्होंने भारतीय दर्शन, भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गंभीरता अध्ययन किया।
1: बिल्कुल,
0: उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के चरित्र और विवेक का निर्माण करना होना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आचार्य विनोबा भावे का मानना था कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गांव में है। वे ऐसे गांव की कल्पना करते थे जहां लोग मिलजुल कर रहे, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें और अपने विकास के निर्णय में स्वयं भाग लें।
0: बिल्कुल,
1: उनकी सोच में ग्राम स्वराज का अर्थ केवल पंचायत का चुनाव नहीं था, इसका अर्थ था गांव अपने विकास, संसाधनों और सामाजिक जीवन में अधिक आत्मनिर्भर और सहभागी बने। आज जब हम ग्रामीण विकास, ग्राम सभा और स्थानीय रोजगार और सामुदायिक भागीदारी की बात करते हैं, तब विनोबा भावे के विचार की प्रासंगिकता हमें महसूस होती है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पा रहे हैं आचार्य विनोबा भावे के जीवन परिचय को, तो ये बातें निरंतर आगे भी हम करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि गांव और ग्रामीण समाज के प्रति विनोबा भावे की क्या सोच थी, यही बात करें भूदान आंदोलन की शुरुआत की, तो श्रोता साथियों, आचार्य विनोबा भावे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था भूदान आंदोलन। वर्ष 1951 में वे तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव पहुंचे। उस समय वहां भूमि से जुड़े सामाजिक और आर्थिक तनाव मौजूद थे। वहां कुछ भूमिहीन लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। विनोबा भावे ने जमीन के मालिकों से आग्रह किया कि वे स्वेच्छा से अपनी भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीन लोगों के लिए दान करें। इसी दौरान एक स्थानीय जमींदार ने भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि देने की इच्छा व्यक्त की। यहीं से भूदान आंदोलन को एक नई शुरुआत मिली।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि जब संपन्न व्यक्ति अपनी क्षमता का थोड़ा हिस्सा जरूरतमंद के साथ बांटता है, तब समाज में केवल मदद नहीं बल्कि विश्वास भी पैदा होता है। भूदान आंदोलन का उद्देश्य जागृति थी, केवल जमीन प्राप्त करना नहीं था, इसके पीछे समाज में सहयोग और समानता की भावना भी विकसित करने का विचार था।
1: बिल्कुल,
0: विनोबा भावे ने पूरे देश में पैदल यात्रा की। वे गांव-गांव जाते, लोगों से मिलते और भूमिहीन परिवारों की समस्याओं पर चर्चा करते।
1: जी हाँ।
0: आगे चलकर ग्राम दान की अवधारणा भी सामने आई, जिसमें पूरे गांव के स्तर पर भूमि और सामूहिक संसाधनों के प्रति सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।
1: जी हाँ।
0: उनका विश्वास था कि यदि समाज के लोग अपने संसाधनों को केवल व्यक्तिगत संपत्ति न मानकर सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे, तो असमानता और संघर्ष को कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आपने भूदान आंदोलन के बारे में बताया, ग्राम दान आंदोलन के बारे में बताया, यही सर्वोदय के विचार के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो विनोबा भावे के दर्शन का केंद्र था सर्वोदय, यानी कि सबका उदय और सबका कल्याण। उनका मानना था कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। समाज का वास्तविक विकास तभी होगा जब सबसे गरीब, कमजोर और पिछड़े व्यक्ति का जीवन भी बेहतर बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: उनकी सोच थी श्रोताओं, सबका भला, सबका विकास और सबके सम्मान के साथ समाज का निर्माण। आज के समय में भी सर्वोदय का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें केवल व्यक्तिगत सफलता के बजाय सामूहिक प्रगति के बारे में सोचने की प्रेरणा देते हैं। हम देखते हैं अंजलि कि विनोबा भावे महिलाओं के सम्मान और उनकी भागीदारों के भी समर्थक थे। वे मानते थे कि समाज का विकास महिलाओं को समान अवसर दिए बिना संभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया। उनके विचारों में महिला केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली व्यक्ति नहीं थी, बल्कि समाज और राष्ट्र की महत्वपूर्ण शक्ति थी।
0: बिल्कुल जागृति जी, विनोबा भावे की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी लोगों तक स्वयं पहुंचकर संवाद करना।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने लंबी पद यात्राएं की, वे गांव में जाते

0: किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम नागरिकों से मिलते और उनकी समस्या सुनते। उन्होंने लोगों को भाषण देने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाया। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए केवल कागजों और रिपोर्टों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लोगों के बीच जाना, उनकी बातें सुनना और उनके अनुभव समझना भी उतना ही जरूरी है। यही बात करें अहिंसा और शांति के संदेश की, तो श्रोता साथियों, विनोबा भावे का विश्वास था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: उनका मानना था कि व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाकर समाज में स्थायी परिवर्तन किया जा सकता है। वे प्रेम, संवाद और नैतिक समझ के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने के पक्षधर थे। आज जब समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ जाते हैं, तब उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि बातचीत में धैर्य से कई समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। जहां संवाद समाप्त होता है श्रोता साथियों, वहां विवाद बढ़ता है, और जहां संवाद शुरू होता है वहां समाधान की संभावनाएं पैदा होती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, यही सरल जीवन और त्याग के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो विनोबा भावे जी का जीवन बहुत ही सरल था। वे सादगी, आत्म अनुशासन और श्रम को बहुत महत्व देते थे।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने कभी धन संपत्ति और व्यक्तिगत सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया ही नहीं। वे समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के बीच रहे और उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास किया।
0: बिल्कुल।
1: विनोबा भावे जी का जीवन स्वयं उनके विचारों का उदाहरण था। वे जो कहते थे उसे अपने आचरण में भी उतारते थे, और यही कारण था अंजलि कि लोग उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि संत और मार्गदर्शक के रूप में भी देखते थे। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे को उनके महान सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उनके सामाजिक योगदान, आध्यात्मिक चिंतन और मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की राष्ट्रीय मान्यता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आचार्य विनोबा भावे को उनकी सामाजिक आध्यात्मिक योगदान के लिए देश ने सम्मान दिए। उन्हें जैसा कि आपने बताया कि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना जीवन सादगी, सेवा और सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित किया। 15 नवंबर 1982 को महाराष्ट्र के पवनार में उनका निधन हुआ। उनका भौतिक जीवन समाप्त तो हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीण समुदायों और शांति के पक्षधर लोगों को प्रेरणा देते हैं। आचार्य विनोबा भावे का जीवन हमें यह समझने का अवसर देता है श्रोता साथियों कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल सत्ता और कानून ही रास्ता नहीं है, बल्कि व्यक्ति की अंतरात्मा, सेवा की भावना, आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण समाज भी परिवर्तन की बड़ी शक्ति बन सकते हैं। उन्होंने अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित किया जिनकी आवाज अक्सर समाज में पीछे रह जाती है। भूमिहीन परिवारों की समस्याओं को उन्होंने केवल एक आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना से जोड़कर समझा।
1: बिल्कुल।
0: आज उनके विचारों को वर्तमान समय से जोड़कर देखना जरूरी है। हमारे गांव में यदि कोई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई किसान संकट में है, कोई बच्चा शिक्षा से दूर है या कोई महिला अपने अधिकारों से अनजान है, तो समाज की जिम्मेदारी है कि वह उसके साथ खड़ा हो। विनोबा भावे का जीवन हमें सामुदायिक भागीदारी की ताकत समझाता है। जब लोग मिलकर किसी समस्या का समाधान खोजते हैं तो समाधान में स्थायित्व और अपनापन दोनों होता है।
1: जी हाँ अंजलि, तो अंत में ये कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से कि आचार्य विनोबा भावे भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से है जिनका जीवन त्याग, सेवा, सत्य, अहिंसा और मानवता का जीवंत उदाहरण है। जैसा कि अभी आपने बताया था, उन्होंने सत्ता और पद की राजनीति के बजाय समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। भूदान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हृदय परिवर्तन के द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन संभव है।
0: बिल्कुल।
1: उनका सर्वोदय दर्शन हमें याद दिलाता है कि समाज की वास्तविक प्रगति तब होती है जब विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती है। साथियों, आचार्य विनोबा भावे का जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अपने लिए जीना सामान्य है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही जीवन की सच्ची महानता है। उनका जीवन हमें संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम अपने समाज में प्रेम, समानता, सहयोग और सेवा की भावनाओं को मजबूत करेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जागृति जी, सेवा छोटी हो या बड़ी, यदि उसके पीछे निस्वार्थ भावना हो तो वह समाज में बदलाव की शुरुआत बन सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इन्हीं विचारों और प्रेरणा के साथ हम आचार्य विनोबा भावे जी को उनकी जयंती पर सादर नमन करते हैं। और आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली जो बातचीत है जागृति जी, वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,

0: की कसम।
1: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

आत्मा जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर हो साथियों कार्यक्रम कथा कहानी को एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है गुरु का महत्व। जी हाँ दोस्तों, जीवन में गुरु ना हो तो हम कभी आगे ही ना बढ़ पाए। इसलिए आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमारे जीवन में एक गुरु का क्या महत्व होता है। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूं, और उस कहानी का शीर्षक है गुरु का महत्व। जी हाँ दोस्तों, आज की 21वीं सदी की युवा पीढ़ी के पास अवसरों की कोई भी कमी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इंटरनेट, तकनीक और असीम संभावनाओं से भरी इस दुनिया में हर युवा आसमान छूना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार बिना कप्तान के जहाज समंदर की लहरों में भटक जाता है, उसी प्रकार सही मार्गदर्शन के बिना युवा ऊर्जा अक्सर गलत दिशा में बह जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी है राहुल की, जो कि आधुनिकता और भाग दौड़ से भरी दुनिया का एक आम युवा है। राहुल ने एक प्रतिष्ठित संस्थान से प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की थी। उसके पास विचारों की कोई कमी नहीं थी। वो एक ऐसा सामाजिक उद्यम शुरू करना चाहता था जो ग्रामीण भारत के पारंपरिक कारीगरों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ सके। लेकिन दोस्तों, जब राहुल ने अपने इस सपने को समाज के पैमाने पर तोड़ना चाहा, तो उसे चारों तरफ से हताशा ही मिली। रिश्तेदारों ने ताने कसे, दोस्तों ने इसे अव्यवहारिक मूर्खता कहा, और यहाँ तक कि उसके अपने भीतर का डर भी उसे रोकने लगा। नौकरी की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है बेटा, ये समाज सुधारने चले हो, उसके पिता के शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगते थे। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसके सपने सच होने के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, वो गहरे तनाव और अवसाद की स्थिति में पहुंच गया। टूटे हुए मनोबल के साथ राहुल एक शाम अपने पुराने कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर वी के शर्मा के घर पहुंचा। डॉक्टर शर्मा केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे कॉलेज के उन चुनिंदा गुरुओं में से थे जो छात्रों की आंखों में छुपे डर और उनके दिलों की थाह को आसानी से पहचान लेते थे। राहुल ने अपनी सारी पीड़ा, अपना असमंजस और अपने अंदर चल रहे द्वंद को प्रोफेसर के सामने उड़ेल दिया। उसने अनम आंखों से कहा, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सही हूँ या गलत। सब कहते हैं कि मेरा आइडिया पागलपन है। क्या वाकई युवा होने का मतलब सिर्फ एक सुरक्षित 9 से 5 की नौकरी करना है? क्या मेरे सपने सच होने लायक नहीं है? तभी डॉक्टर शर्मा अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने राहुल के कंधे पर अपना हाथ रखा, जिसमें गहरी आश्वस्ति और स्नेह था। उन्होंने राहुल को बैठने का इशारा किया और चाय का कप बढ़ाते हुए एक गहरी बात कही, राहुल एक साधारण शिक्षक तुम्हें किताबों के पन्ने पलटना सिखाता है और परीक्षा पास करवाता है, लेकिन एक सच्चा शिक्षक तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर झांकना सिखाता है।

बिजली या उपजाऊ पानी में बदल देता है। इसी के साथ तुमसे कहना चाहूंगा कि असफलता के अंधकार में उम्मीद का दिया जलाना बहुत ही कठिन होता है। दुनिया आपको तब तक सराहती है जब आप सफल होते हैं, लेकिन एक शिक्षक ही वो शख्स होता है जो आपकी असफलता पर भी आपका हाथ थाम कर कहता है, कोई बात नहीं, गिरना बुरा नहीं है, गिरे रह जाना बुरा है। वो आपको हार से लड़ने की असली शक्ति देता है। और इसी के साथ चरित्र और विवेक का निर्माण भी बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि गूगल और एआई के इस दौर में जानकारी आसानी से हमें मिल जाती है, लेकिन उस जानकारी को ज्ञान और ज्ञान को विवेक में बदलने की कला केवल एक गुरु ही सिखा सकते हैं। तकनीक आपको साधन दे सकती है, पर जीने की कला और नैतिक मूल्य एक शिक्षक ही देता है। दोस्तों, प्रोफेसर शर्मा की इन बातों ने राहुल के भीतर एक नया आत्मबल फूंक दिया था। उसे समझ आ गया था कि उसके सपनों में कोई खोट नहीं थी, बस उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए अपने भीतर के डर को हराना था। राहुल ने बिना किसी परवाह किए अपने स्टार्टअप पर पूरी शिद्दत से काम किया। शुरुआती महीनों में उसे इस भारी संघर्ष करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब भी वो हताश होता, प्रोफेसर शर्मा की कही हुई बातें और उनका समर्थन उसे फिर से खड़ा होने की ताकत दे देता था। आज 3 साल बीत चुके थे, राहुल का वो छोटा सा विचार आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो देश के हजारों ग्रामीण कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रहा है। उसे कई राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन अपनी हर सफलता का श्रेय वो सबसे पहले अपने गुरु डॉक्टर शर्मा को देता है। तो दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के युवा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया के दबावों के दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई रातों रात सफल होना चाहता है, जिससे उनके भीतर मानसिक तनाव और अधीरता बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक, गुरु या मार्गदर्शक का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। चाहे वो आपके स्कूल का शिक्षक हो, कॉलेज का प्रोफेसर हो या जीवन का कोई अनुभवी व्यक्ति, उनका सम्मान करें। उनके अनुभव आपके जीवन के सबसे बड़े रक्षक और शॉर्टकट साबित हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक बेहतरीन शिक्षक आपको सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बनाता, बल्कि आपको एक बेहतर और संवेदनशील इंसान भी बनाता है, जो दुनिया को बदलना जानता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी के लिए शिक्षक का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट और किताबों से ज्ञान तो आसानी से मिल रहा है, पर विवेक, धैर्य और चरित्र का निर्माण केवल एक शिक्षक ही कर सकता है। चाहे वो स्कूल का शिक्षक हो, कॉलेज का प्रोफेसर हो या जीवन का कोई अनुभवी मार्गदर्शक, उनका सम्मान करें दोस्तों। उनके अनुभव आपके जीवन के सबसे बड़े शॉर्टकट साबित हो सकते हैं। याद रखिए, एक अच्छा शिक्षक आपको जीवन भर के लिए जीना सिखाता है, और वही जीना हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुरु के महत्व को लेकर। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है, वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और गीत से पहले मैंने आपको गुरु के महत्व को लेकर बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी। कहा गया है दोस्तों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हम देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही शिक्षक यानी गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। अगर माता पिता हमें इस भौतिक संसार में जन्म देते हैं तो एक शिक्षक हमारे व्यक्तित्व को गढ़कर हमें इस योग्य बनाता है कि हम इस संसार में ससम्मान जी सके। हम देखते हैं कि शिक्षक शब्द केवल एक पेशे तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन संस्था है जो अज्ञानता के अंधकार को चीर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। आज 21वीं सदी के इस आधुनिक तकनीक और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी युग में जहाँ सूचना और ज्ञान का अंबार लगा है, वहाँ भी एक सच्चे शिक्षक की प्रासंगिकता और उसका महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। हम कह सकते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि युवा अवस्था मानव जीवन का सबसे संवेदनशील, ऊर्जावान और निर्णायक पड़ाव होता है। ये वो उम्र है जब एक युवा के मन में भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने होते हैं, जैसे कि राहुल के मन में थे। लेकिन साथ ही भटकाव, असुरक्षा और भ्रम की स्थिति भी सबसे ज्यादा इसी दौर में होती है, जैसे कि राहुल के मन में था। ऊर्जा का सही प्रबंधन, यानी कि युवा पीढ़ी के पास असीम ऊर्जा और शारीरिक क्षमता तो होती है, अगर ये ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो इतिहास रचा जा सकता है। लेकिन दिशाहीन होने पर यही ऊर्जा विनाश का कारण भी बनती है। और इसी के साथ दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये कहना चाहेंगे कि शिक्षक जो है वो अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। एक युवा को केवल विषयों की जानकारी नहीं देते, बल्कि उन्हें सही और गलत में अंतर करना भी हमें सिखाते हैं। शिक्षा के माध्यम से शिक्षक बच्चों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान का दीपक जलाते हैं, शिक्षक जीवन महकाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, एक विद्यार्थी का अच्छा इंसान बनना भी उतना ही आवश्यक है। और दोस्तों एक अच्छा शिक्षक हाथ पकड़कर नहीं, हौसला देकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। हर सफल व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी शिक्षक का योगदान अवश्य होता है। शिक्षक विद्यार्थी को, युवाओं को ये बताते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से मिलती है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए सही दिशा और लगातार मेहनत करनी भी बहुत जरूरी है। और शिक्षक युवाओं की रुचि और क्षमता को पहचान कर उसे सही मार्ग भी दिखाते हैं। हम कह सकते हैं कि सपनों को केवल देखो नहीं, उन्हें पूरा करने का साहस भी रखो, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही सिखाते हैं। असफलता से सफलता तक का जो सफर होता है हमारे जीवन में, वो भी हमें एक शिक्षक ही पार करवाते हैं। जीवन में असफलता आना कोई अंत नहीं होता है, लेकिन कई बार हमारे युवा साथी उससे घबरा जाते हैं। तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि एक शिक्षक विद्यार्थी को, युवा को ये सिखाते हैं कि गलती से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। और एक अच्छा शिक्षक युवाओं की कमियों पर केवल ध्यान नहीं देते, बल्कि उनकी खूबियों को पहचान कर उन्हें मजबूत बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आज की मेहनत ही तुम्हारी कल की पहचान बनेगी। और दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि शिक्षक वो व्यक्ति है जो युवाओं के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान कर उन्हें सफलता की दिशा देते हैं। वो स्वयं शायद मंच पर खड़े होकर प्रसिद्ध न हो, लेकिन उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी जब सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। एक शिक्षक के शब्द कभी कभी विद्यार्थी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए शिक्षक का सम्मान केवल इसीलिए नहीं होना चाहिए कि वो हमें पढ़ाते हैं, बल्कि इसीलिए भी कि वो हमें अपने सपनों पर विश्वास करना भी सिखाते हैं। कहा गया है कि एक शिक्षक की मेहनत का परिणाम केवल एक विद्यार्थी की सफलता नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र के रूप में भी सामने आती है। अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि गुरु वो दीप है जो स्वयं जलकर हजारों जीवन रोशन करते हैं। गुरु वो विश्वास है जो कहते हैं रुको मत, आगे बढ़ो, क्योंकि जहाँ शिक्षक का मार्गदर्शन होता है वहाँ सपनों को मंजिल मिलने की राह जरूर मिलती है। तो दोस्तों ये थी कहानी और इससे जुड़ी कुछ बातें। अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हमें विदा लेना होगा। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज जो कहानी सुनाई और उस कहानी से जुड़ी कुछ बातें भी रही, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूँ मैं बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी मैं हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानी आपको सुनवाती हूँ, जो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी सीख देती है, और इन कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ अलग बातों को सीख पाते हैं। तो आज भी मैं कार्यक्रम में कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरू में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज भी मैं आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। आज हमारी कहानी का शीर्षक है आखिरी रोटी। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले एक छोटे से गाँव में एक गरीब माँ और उसका छोटा बेटा रहते थे जिसका नाम था गोपाल। उनका घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और रसोई में अक्सर खाली बर्तन ही दिखते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। पूरा दिन बीत गया था लेकिन घर में खाने के लिए सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। माँ ने रोटी को हाथ में लिया और गहरी सांस ली। माँ ने रोटी गोपाल को देते हुए कहा, बेटा तुम खा लो, तुम छोटे हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। गोपाल ने रोटी को देखा, फिर माँ की ओर देखा। माँ आपने कुछ खाया, उसने पूछा। माँ मुस्कुरा दी, मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। गोपाल समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है। वह रोटी लेकर बाहर चला गया। वह सोच रहा था, अगर मैं खा लूं तो माँ भूखी रहेगी और माँ खा ले तो मैं भूखा रहूंगा। बच्चों, उसके छोटे से दिल में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत कमजोर था, कांप रहा था और उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना है? गोपाल के हाथ में वही आखिरी रोटी थी। गोपाल कुछ पल चुप रहा। बच्चों, उसने सोचा कि अगर मैं ये रोटी दे दूं तो माँ और मैं दोनों भूखे रह जाएंगे। फिर उसने बूढ़े आदमी की हालत देखी और बिना कुछ बोले वह रोटी उसके हाथ में रख दी। गोपाल घर लौटा। माँ ने पूछा, रोटी खा ली? गोपाल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उस रात दोनों भूखे सो गए, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत सारे अनाज के बोरे रखे थे। माँ हैरान रह गई, यह सब कहाँ से आया? तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया, लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं लग रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी किसी भूखे को दे दी, इससे बड़ा दिल कोई नहीं रख सकता। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उन्हें अनाज मिल गया, सबसे बड़ी बात यह थी उन्होंने दूसरों के लिए जीना सीख लिया था। तो बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि सच्ची इंसानियत वही है जब हम अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत देखें। छोटा त्याग भी जीवन बदल सकता है और दिल से किया गया अच्छा काम कभी बेकार नहीं होता। बच्चों, अक्सर हमारे जीवन में भी बहुत सी बार ऐसा होता है, हम पहले खुद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। बहुत सी बार हम अपने माता पिता को लेकर भी खुद स्वार्थी हो जाते हैं। पहले हम अपने बारे में सोचते हैं और फिर माता पिता के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी इंसान हो, सबसे पहले दूसरों की मदद करनी है, फिर हमारी खुद की मदद करनी है। जैसा कि गोपाल के पास एक ही रोटी थी, लेकिन फिर भी उसने उस बूढ़े आदमी की भूख को कम करने के लिए वो रोटी उसे दे दी। तो इस तरीके से बच्चों, हमें ये कहानी बहुत ही प्यारी सी सीख देती है। इस कहानी की गहराई यही है कि जब आपके पास कुछ भी न हो तब भी आप देने का हौसला रखें, वहीं से इंसान महान बनता है। तो बच्चों, यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। आगे एक और प्यारी सी कहानी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी, यही अब हमारी अगली कहानी है, बूढ़ा कुम्हार और अधूरी मिट्टी। जी हाँ बच्चों, एक शांत गांव में हरिदास नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसके हाथों में जादू था, मिट्टी के ऐसे घड़े बनाता कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसका एक बेटा था रवि। रवि तेज था लेकिन धैर्य नहीं था। एक दिन हरिदास चाक चला रहा था। रवि बोला, बाबा ये सब पुराना तरीका है, मैं जल्दी जल्दी घड़े बनाना चाहता हूँ। हरिदास मुस्कुराया, जल्दी में बनाई चीज टिकती नहीं है बेटा। रवि हंस पड़ा, आज के जमाने में तेज चलना पड़ता है बाबा। रवि ने खुद चाक संभाल लिया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी उगाई, पानी मिलाया और घड़ा बनाने लगा। कुछ ही देर में घड़ा बन गया। रवि खुश होकर बोला, देखा बाबा, आपने पूरा दिन लगाया, मैंने आधे घंटे में बना दिया। हरिदास ने घड़े को ध्यान से देखा, फिर धीरे से पूछा, इसमें ठहराव कहाँ है रवि? रवि चिढ़ गया, आप हर चीज में क्यों कमी ढूंढते हो? अगले दिन रवि अपने बनाए घड़े बाजार ले गया। एक ग्राहक ने घड़ा उठाया, कितने का है? रवि बोला, 50 रुपए। ग्राहक ने घड़े को थपथपाया और अचानक ठक, घड़ा बीच से फट गया। ग्राहक गुस्से में, ये क्या मजाक है? बच्चों, रवि शर्मिंदा हो गया। रवि घर लौटा, हरिदास ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने गुस्से में कहा, लोग ही बेकार हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। हरिदास शांत स्वर में बोला, लोग नहीं, घड़ा अधूरा था। रवि चुप हो गया। उस रात रवि धीरे से बोला, बाबा क्या सच में मैं गलत हूँ? रविदास ने उसकी ओर देखा और कहा कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे मानना और सीखना जरूरी है। बच्चों, रवि की आंखें झुक गई। उसने पिता से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? हरिदास ने मिट्टी उगाई और कहा, देखो बेटा, मिट्टी को समझना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है, जल्दी करोगे तो वह टूट जाएगी। रवि यह सब बातें ध्यान से सुन रहा था। और इंसान भी मिट्टी की तरह ही होता है, हरिदास बोला, अगर खुद को समय नहीं दोगे तो तुम भी अंदर से टूट जाओगे। बच्चों, फिर होती है नई शुरुआत। अगले दिन रवि फिर चाक के पास आया। इस बार उसने धीरे धीरे मिट्टी उठाई। हरिदास ने पूछा, आज जल्दी नहीं है? रवि हल्का मुस्कुराया, आज सीखना है, बनाना नहीं। दिन बीतते गए। रवि अब हर घड़ा ध्यान से बनाता। कभी घड़ा बिगड़ जाता तो गुस्सा नहीं करता, वह खुद से कहता, अब मैं सीख रहा हूँ। कुछ महीनों बाद बच्चों, रवि ने घड़ा बनाया। हरिदास ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में चमक आई। अब इसमें जान है बेटा, रवि ने पूछा, सच में? हरिदास ने कहा, अब तुम सिर्फ घड़ा नहीं, अपना धैर्य बना रहे हो बेटा। रवि फिर बाजार गया और वही ग्राहक मिला। उसने फिर पूछा, कितने का है? रवि ने कहा, पहले देखिए। ग्राहक ने घड़ा उठाया, थपथपाया। इस बार घड़ा मजबूत था। वो मुस्कुराया, अब बात बनी है। रवि घर लौटा, बाबा इस बार सब घड़े बिक गए। रविदास ने मुस्कुराकर पूछा, और तुमने क्या सीखा? तो बच्चों, रवि ने बताया कि जल्दी में कुछ नहीं मिलता, धीरे सबसे बड़ी ताकत है और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हरिदास ने सिर हिलाया और कहा कि अब तुम सच में कुम्हार बन गए हो। तो बच्चों, ये कहानी हमें बहुत ही प्यारे से सीख देती है कि धैर्य के बिना कोई भी काम अधूरा रह सकता है। जल्दी सफलता नहीं, सही तरीका निभाना बहुत जरूरी है। और अक्सर हम बहुत सारी चीजों को लेकर ये सोचते हैं कि ये तो मुझे आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, यकीन मानिए, हर पल हमें कुछ न कुछ सीखते रहने की जरूरत है। हम पशुओं से कुछ सीख सकते हैं, हम हमारे बड़ों छोटों हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख ले सकते हैं। तो बच्चों, हर इंसान एक मिट्टी की तरह ही होता है। अगर खुद को समय दोगे तो मजबूत बनोगे, अगर जल्दबाजी करोगे तो टूट जाओगे मटकी की तरह। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी, बूढ़ा कुम्हार और अधूरी मिट्टी। आशा करती हूँ बच्चों की आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

बच्चों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की समय विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, नई प्रेरणादायी कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के सजाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार कर रही है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसार।

साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से घबराते नहीं, मुश्किलों के आगे अपने कदम कभी नहीं रोकते। जी हाँ, हर ठोकर से सीखो और फिर आगे बढ़ते जाओ। अपने सपनों को मेहनत से हकीकत बनाते जाओ। याद रखो, हौसला है तो कोई सपना बड़ा नहीं है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में जब भी हम हर रविवार को हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं और उनके जीवन के संघर्ष को जानते हैं, किस तरीके से उनके जीवन का पहले का समय था और कैसे बदलाव उन्होंने अपने जीवन में लाया है। तो ऐसे ही समुदाय साथी की एक महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका जीवन पहले अलग था और अभी के समय में कुछ और है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से इन ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे।
1: जय गुरु।
2: जय गुरु।
1: तुम्हारो हूँ नाम है?
2: मारो नाम अस्मिता ग्रासिया है ने मार गाम नो नाम जखोड़िया नाथा है।
1: तज़ीम की तमे तमारो नाम बताड़ू ने तमे के रहवा वारो ई तमे बताड़ू, तो मु आज कार्यक्रम में तमाते की जानू चाहूंगा कि तमारो जे बचपन हतु ई हरते नहीं रियो, आपने जीवन में हूँ अभाव हतु ने हरते आप पे आपनो जे बचपन है गुजारियो तो।
2: जरा बचपन में बनती थी तने वक्त होकवाय इतना समझदार ने था, शिक्षा ने कमी थी तेन कारण थकी कम उम्र में होकवाय मारी शादी थई गई। जरा दसवीं बनती थी ने एने बाद होकवाय भणवो भी मैं हाथे हाथे छोड़ियों ने मकवा तने वक्त मार मम्मी पप्पा मन बनावा चाहता था ते मैं भी कौन छोड़ियो ने आज भी एन हाथे हाथे बनी भी हाथे हाथ घर ने जिम्मेदारी भी आवी गई शादी बाद ते ते फिर ना बे तीन साल बाद बच्चे भी हो गए तो होकवा सब जिम्मेदारी नावा कारण होकर शरीर में कमजोरी घर ने जिम्मेदारी सब होकवा गजब समस्या आती थी तो तेन कारण था कि होकवा बनवा मा पूरा टाइम ने मत तो ने घर ने जिम्मेदारी काम हरू भी ने फिर कोई हर चीज में जरूरत जी पूरी नहीं थी सकती थी। ते कोई तनी वक्त जरा वाक दरा सस्ता मा उजुड़ी हमारा सर आता था तना सर तक मैं बात करी ने एन में जुड़ी ने मैं काम भी करू ने काम करवा बाद आम कोई पोषण वाड़ी लगाड़ी हमें घर में ने जी आलता था मन वाक दरा था कि पौधा ने तो क्या हमारे घर में होकर हमें खेतर मन वाड़ी लगाड़ी ने ते था कि हमारी जरूरतें पूरी थाती थी ने आज भी हम होको है अने सब जी बीज आले इन था कि हम जी सब्जी बीज आवे ते था कि हमारे घर वाड़ी लगाड़ी फल फूल पौधा लगाड़िया ने हमने हमारे जीवन हाथे हाथे में फिर होको है घर ने जिम्मेदारी ने सोरा ने बनावा ने भी जिम्मेदारी सिर पर आ गई ते हमने हमें होको है सिलाई मशीन हाथे हाथे सिलाई कर वो ही की हूँ ते घर ने काम ने हाथे हाथे हूँ सिलाई भी करूँ ने साबुन ने सरफ ने जीरा जीविका थकी हूँ जुड़ी एक सस्ता थकी तेन थकी भी जुड़ी ते ताहे मैं अगरबत्ती सरफ साबुन ने एम हर्बल जी चीज है जी बिना केमिकल की ते ई भी हमको बनाता ही की ते क्यों भी वहाँ का घर बैठी बैठी खेती बिजी मरते कौन जाती पर घर बैठी बैठी सोरन भी हम आओ ने घर ने जिम्मेदारी काम काज भी करो ने घर में हमको हमारा सरफ हाबू ने शैम्पू ये भी हमको बिक्री भी करूँ घर बैठी बैठी सिलाई भी करी रही तेन हाथे हमको हमारी जरूरतें भी पूरी थी रही
1: ने सेम की आप बता रही रहो कि आप हरते तमारा नानपण तकी नेरियो शादी थई शादी बाद सोरश ने घणा कने जिम्मेदारी ने हाथे तमे वागधारा संस्था तकी जुड़िया जेम की आपे बात बताड़ी थी कि वागधारा संस्था तकी तमे जुड़िया तई वक्त मीटिंगे थाती थी आमनो तेमनानी चीजे थाती थी जेमे बताड़ू क्यों कि आपणाने पोषण वाड़ी लगाड़वी सुए तो इन में तमने हरते खबर पड़ू कि वास्तविक में पोषण वाड़ी आपणे लगाड़ो तो आपणे घरना सोरा नु भरण पोषण ने आपणे स्वास्थ्यनी जे पूर्ति है ई आपणे असल तरीका तकी करी शकू
2: एन थकी अमन हो कोई जरा पोषण वाड़ी लगाड़ी ते अमन हो कोई जरा अमन बाहर थकी बाजार थकी सब्जी लावता था ते तीन हरू हो कोई गर्मा महास पैसा काटे ने लावता ने जी केमिकल इथो ने के सब्जी की भी आपन ने खबर इथो अमन खबर ने थो के पण जरा हो कोई गर्मा लगाड़ी अमे सब्जी पोषण वाड़ी ते तीन में हो कोई सब्जी भी अमन हो कोई वगर केमिकल वाली खाता था ने एने बाद हो कोई बीमारी भी कम थवा लगी गई जी गर्मा बीमारियां थाती थी भी कम थई गई ने हाथे हाथे हूँ कीड़े बाहर थकी जी बिना मतलब वगर धोवी लिख के की कहे गाड़िया माहे आवे सब्जी एम कर नामो थकवाए ते क्या उलावी बंद कर दीदी तेन थकी घर में खर्चो भी कम थवा लगी जो ने एन थकी अमार वाक दरा सस्ता में जरा आमे हाथे हाथे जी दस पड़नी दवाई भी आमो बनावा लगी जो ते जी घर थकी दवाई बनावे ने घर ने पोषण वाड़ी में यूज करवा लगी जो तेन थकी अमार ઘણો જ ફાયદો થાય એવા દ્વારા સંસ્થાનું કારણ.
1: હવે જેમ કે આપે બતાડ્યું કે જેમ કે દર્શપણની આપે બનાવવું શરૂ કર્યું ને ઘણા ઘણી ચીજે આપે શરૂ કરી દીધી હે. આયા સવે હું એ જાણવું ચાહ્યું કે અવડેના ટાઈમમાં આપ શું કરી રહ્યો હો ને હરતે આપના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું.
2: જી

0: तेनहारू सब चीज सब बेनन के दो के जी आप को जी बकरा मतलब जी बकरी नहीं खाती पालो जो पालो आप अलग अलग पतिया हो का बिगी करे ने आप कूटी पीसे पसे आप दवाई बना भी आने दाड़े में दाड़ो फिक्स करे पसे आमे सब बेनन मे ने आमे दवाई बना भी तेन थकी हो को जरा पसे ये पूरी तैयार थेगी ने सब ने हो को घर में यूज करवा हर रुपया दवाई बाटी तेन थकी इंजन फायदो लागो तेन थकी इंजन जीवन में बिताई कहा मतलब ये चीज जी जरूरत आपड़ी जरूर एन था कि बुरी था हैन यो असल निसी जेम करन ये भी यूज करवा लगी के जी
1: होवे तो सेम की आप घणो असल काम करी रहो हो तो अगाड़ी आप हो करवो चाहि रहो हो हरते समाज में बदलाव लावानी कोशिश आप ने मन में है
0: आवा वाला दाड़ा मा जीवी रीते हो का बगर केमिकल वा मतलब जी आपड़ जैविक खेती हारू ने जी हूँ कोशिश करी रही है मार जीवन में है कि आवा वाला दाड़ा जी बाहर निसी जी है ई बंद करे ने आपड़ गाम ने एक वगर केमिकल थकी मतलब जी खेती हारू है जैसे दवाई है ने आपण गरम भी फोड़ी फुंसी कई प्रकार की बीमारी है तेन हारू भी सरफ साबुन मतलब ते आप खुद ही के ने पसे बिजनेस सब ने ही काड़े ने अपने महिला जी समूह में जुड़ी है नहीं जुड़ी पर आप आस पास सब बन बताड़े ने तेन थकी मतलब धीरे धीरे अपना गाँव ने एक असल हो का देखवा चाहू है
1: आप बिजी बोनर ने जे आ कार्यक्रम हमरी रही इन्होंने हो संदेश आलू चाहूंगा
0: एन तक कि मैं इन्होंने इस संदेश आलवा चाहू के आवा वाला दाड़म जीवी रीते मार जीवन में बदलाव थायो मो बचपन था कि आ तक मो पुगी ने जी हूँ कोई ओने बोली सकती थी बीजागढ़ ने जी काम ओने करी सकती थी इवी रीते तमो भी यो संदेश सामने ने आ तमारा जीवन में तमो भी हूँ कोई बदलाव करे सको
1: तो मैं आपनो धन्यवाद करवो चाहूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम तक जुड़े
0: धन्यवाद
2: साथियों जैसा कि अभी हमारे बीच में समुदाय साथी की महिला जुड़ी हुई थी और उनके माध्यम से हमने जाना कि किस तरीके से पहले का जो समय था उनके जीवन में वो किसी के सामने बोल नहीं पाती थी कुछ काम नहीं करती थी लेकिन अब वह घर में पोषण वाड़ी लगाती है उनसे मिलने वाले सब्जियों को घर में ही काम लेती है साथ ही वो जैविक साबुन सर्फ और ये सारी चीजें भी बनाती है और सिलाई भी करती है ताकि उनके घर का जो गुजारा है वो अच्छे से हो पाए तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में नारी प्रकरण में हमने ढेर सारी बातों को जाना था, यही कशिश आगे इसी प्रकरण में बात करें तो एक विशेषक्त पति आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि करते करते विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य पालन तक पहुंचता है। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने से पहले वह लगभग 6 वर्ष तक मनोमंथन के दौर से गुजरता है।
1: बिल्कुल,
0: पत्नी की सहमति लेता है और प्रतिज्ञा उनके अपने लिए जितनी कठिन थी वैसे ही पत्नी को कभी कठिन नहीं लगी, ऐसा वे उल्लेख करते थे। गांधी जी इस तरह निरंतर विकास करते थे, वैसे वैसे उनकी सहधर्मिणी भी विकास करती जाती थी।
1: बिल्कुल,
0: अलबत्ता इसके विकास के सोपान गांधी जी के नए नए कदमों के साथ जुड़े थे। इसकी शुरुआत विस्मय से होती, फिर थोड़ा रोष और थोड़ी जिज्ञासा होती, फिर श्रद्धा और थोड़ी बहुत समझ के साथ वे पति के परिवर्तन के साथ अपना जीवन व्यवस्थित करती। एक बार स्वीकार कर लेने के बाद उस संबंध में उसकी समझ गहरी से गहरी होती जाती।
1: बिल्कुल,
0: तदुपरांत उसी सिद्धांत को वो बहुधा दूसरों को प्रभावशाली रीति से समझाने भी लग जाती। दक्षिणी अफ्रीका में जब हिंदू या मुस्लिम विधि के अनुसार होने वाले विवाह को वहाँ की कोर्ट ने विधि सम्मत नहीं माना कशिश, तब कस्तूरबा भी गांधी जी के साथ इसका विरोध करने को तैयार हो गई थी।
1: बिल्कुल,
0: मन से जेल जाने को भी तैयार हुई। वहाँ खाने पीने को क्या मिलेगा यह उनकी चिंता का सवाल नहीं था। गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम अपने खाने संबंधी नियम जेल अधिकारी को बता देना, वे लोग तुम्हारे बताए अनुसार खाने को न दे तो उनके खिलाफ उपवास कर देना।
1: जी हाँ,
0: जब यह बात गांधी जी ने कही तब कस्तूरबा ने कहा कि आप तो मुझे मारने की बात करते हैं। तब गांधी जी ने कहा कि तुम जेल में मरोगी तो मैं तुम्हें जगदम्बा की तरह पूछूंगा। और सचमुच 3 दशकों बाद कस्तूरबा ने जब जेल में ही प्राण त्यागे तब गांधी जी रोजाना उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते थे। इस प्रकार कस्तूरबा और गांधी जी के पति बने से शुरू करके एक दूसरे को जगदम्बा समझकर पूछे वहाँ तक वे पहुँचे थे। यह संबंध जबरदस्ती या क्रूरता का हरगिज नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: बुद्धि में, ज्ञान में, चिंतन में, सिद्धांत निष्ठा में दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई थी, ये सच है। पर प्रेम, समझौता, एक दूसरे को समझने का प्रयास, श्रद्धा, निर्विकारता और समानता के भाव के कारण यह संबंध दिनों दिन अधिकाधिक पुनित होता गया था।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, जैसा कि हमने पहले देखा कि गांधी जी ने वैवाहिक जीवन में कस्तूरबा की सहमति से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। गांधी जी ये मानते थे कि मनुष्य समझदार होता है तभी से सतत आत्म संयम का जीवन जीना शुरू कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: वही अंजलि जी मनुष्य और पशु के बीच यह मुख्य भेद रेखा है। वे ये भी मानते थे साथियों कि ब्रह्मचारी विहीन जीवन शुष्क और पशुवत बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जानवर स्वभाव से निरंकुश है, मनुष्य का मनुष्यत्व स्वेच्छा से अंकुशित बनने में है। गांधी जी व्रत पालन के संबंध में स्वयं के बारे में जितने आग्रही और कठोर थे उतने दूसरों के संबंध में नहीं थे।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने एक मित्र से कहा था कि तुम कोई व्रत न ले सको तो उसमें कोई हानि नहीं है, यदि तुम कोई व्रत लो और फिर उसे छोड़ने को मजबूर हो जाओ तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा।
0: बिल्कुल
1: साथियों, गांधी जी द्वारा देश को सुझाए हुए कार्यक्रमों में रचनात्मक कार्यों का कार्यक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल,
1: अलबत्ता कांग्रेस ने अहिंसक आंदोलन पर जितना ध्यान दिया उतना इस कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दिया गया था। रचनात्मक कार्यक्रम में स्त्रियों की जागृति सम्बन्धित कार्यों का भी समावेश था। साथियों, गांधी जी ने शहरों में रहने वाली और समाज का काम करने वाली बहनों को गाँव में जाकर रचनात्मक कार्यों के साथ जुड़ने की सलाह दी थी।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी के आसपास की अनेक महिलाओं ने गांधी जी की इस सलाह को स्वीकार भी किया था। अंजलि जी वर्धा छोड़कर गांव जाने वालों में पहली मीरा बहन थी। गांधी जी उनके पीछे पीछे सेवाग्राम भी गए थे। मीरा बहन ने तो बाद का संपूर्ण जीवन ही स्त्री जागृति, खादी कार्य और रचनात्मक कार्यों में बिताया था। वहीं गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने हिमालय की तलहटी में जाकर गौ सेवा का भी काम किया था।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ श्रोता साथियों बात करें, बीबी अमतुल सलाम ने गांधी जी के जाने के बाद खादी ग्रामोद्योग का काम पंजाब में व्यापक रूप से किया था। चीनी आक्रमण के बाद उन्होंने भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर इसी प्रवृत्ति को व्यापक पैमाने पर शुरू किया था। आशा देवी आर्य नायकम ने देश में नई तालीम के काम का शुभारंभ अपने पति के साथ किया था। गांधी जी की मृत्यु से लेकर ठेठ अपने प्राण त्याग तक उन्होंने यही काम किया था। मार्जरी साइकस ने भी आशा देवी की तरह नई तालीम और शांति सेना के काम किए थे। प्रेमाताई केटक ने महाराष्ट्र में रचनात्मक कार्यों की धूम चलाई थी। रमा देवी और मालती देवी चौधरी ने उड़ीसा में रचनात्मक कार्यों द्वारा नारी जागृति ला दी थी।
2: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी नारी प्रकरण को लेकर ढेर सारी बातें चल रही हैं, ये बातें आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी यहाँ मनोरंजन करवाते हैं साथियों को एक और पैरे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। यही अब बात करें तो श्रोता साथियों, दक्षिण भारत में डॉक्टर सौंदरम ने मुदेर जिले में ग्राम विद्यापीठ का सफलता के साथ संचालन किया था। कर्नाटक की कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया था। कस्तूरबा की याद में जब गांधी जी जेल में थे कशिश, तभी जो राशि इकट्ठा हुई थी उससे कस्तूरबा स्मारक निधि स्थापित हुआ था। इस संस्था ने पूरे देश में महिलाओं और बच्चों की सेवा के काम किए थे। आसाम में अमल प्रभा दास तो वहाँ की सबसे लोकप्रिय रचनात्मक कार्यकर्ता थी। उत्तराखंड में इंग्लैंड से आई सरला बहन ने कोसानी में कार्यालय खोलकर नारी शिक्षण का काम किया था। दक्षिण में यशोधरा, दासप्पा और लक्ष्मी मेनन के नाम सहज ही याद आने जैसे हैं। व्यय सीमा की गोरी देवी और श्रीमती तिरखा ने जीवन भर रचनात्मक कार्य किए थे। संक्षेप में यूं कहा जा सकता है कि बहनों ने रचनात्मक कार्य के द्वारा उनमें विद्यमान सृजन शक्ति का उपयोग राष्ट्र सेवा और विशेष रूप से गरीब लोगों की सेवा में किया था।
1: जी बिल्कुल साथियों, इसी बात ही स्वराज संग्राम में भी स्त्रियों में जिस तरह से जागृति आई थी, वैसे ही अहिंसक संग्राम को आगे बढ़ाने में महिलाओं का सहयोग भी कम न था।
0: बिल्कुल,
1: कस्तूरबा, सरोजनी नायडू, कल्पना देवी चट्टोपाध्याय जैसे नाम तो राष्ट्रीय स्तर पर गिने ही जा सकते हैं, पर प्रादेशिक स्तर पर काम करने वाली महिलाओं का योगदान इनसे जरा भी कम नहीं माना जा सकता। गुजरात में गंगा बहन वैद, मणि बहन पारिक, नदुबा कानूनगो, मृदुला आसर, मिठू बहन पेटीट, ज्योत्सना बहन शुक्ल और अन्य बहनों का स्वराज के संग्राम में योगदान मामूली नहीं था।
0: बिल्कुल,
1: वहीं पूर्ववर्ती आसाम, बंगाल व उड़ीसा में जिन बहनों ने रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया था, उन्होंने स्वराज संग्राम में भी भाग लिया था।
0: बिल्कुल,
1: मुंबई में गोशी बहन पिटिट, पेरिन बहन कैप्टन, सोफिया वाडिया, महाराष्ट्र में प्रेमा बहन कटंक और सुशीला पे, दिल्ली में अरुणा आसफ अली और विद्यावती, कलकत्ता में नैली सेन गुप्ता, श्रीमती चितरंजन दास, संयुक्त प्रांत में कमला नेहरू, बिहार में प्रभावती नारायण, इन सभी के नाम तो फौरन ध्यान में आ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वहीं अन्य प्रांतों और जरूरी प्रांतों में भी सत्याग्रह में आगवानी करने वाली बहनों की संख्या भी कम नहीं थी। इन और ऐसी हजारों बहनों की राष्ट्रभक्ति, सेवावृत्ति और त्यागवृत्ति को जागृत करने वाले किसी एक व्यक्ति का कोई नाम पूछेगा तो सब एक स्वर में कह उठेंगी कि वे थे गांधी जी। गांधी जी ने अनेक रुचियों वाले लोगों को आकर्षित किया था। उनमें अनेक प्रकार की महिलाएं भी थी। अंजलि जी, बहनों को इतनी बड़ी संख्या में आकर्षित कर पाने का कारण ज्ञात करें तो वह मिलेगा गांधी जी के चरित्र में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे साथियों, तब गोखले जी ने उनके बारे में जो सम्मान भरे वचन कहे थे, उनमें से यह एक था कि जिनके पास जाने से विकार समाप्त हो जाए, ऐसे जो दो व्यक्ति मैंने देखे हैं, एक मेरे पूज्य गुरु महादेव गोविंद रानाडे और दूसरे एम के गांधी।
0: बिल्कुल,
1: गोखले से भी वर्षों पूर्व एक अंग्रेज महिला श्रीमती मिली ग्रेहाम पोलाक ने गांधी जी के बारे में इसी आशय की बात कही थी कि उनका चरित्र ही ऐसा था जैसे मैं अपनी किसी सहेली के समक्ष अपनी निजी से निजी प्रश्नों की चर्चा कर सकती हूँ, वैसे गांधी जी के साथ भी कर सकती हूँ। गांधी जी ने स्वयं ऐसा दावा किया था कि वे हजारों स्त्रियों के संपर्क में आए होंगे, पर उनके साथ व्यवहार करने में किसी ने भी संकोच महसूस नहीं किया।
0: बिल्कुल, यही बात करें तो श्रोता साथियों, चारित्रिक विकास की दिशा में गांधी जी का प्रमाण दो प्रकार का था। इनमें से एक का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। वे प्रत्येक पुरुष में स्त्रियों के गुणों का और प्रत्येक स्त्री में पुरुषों के गुणों का विकास चाहते थे।
1: बिल्कुल,
0: स्वयं गांधी जी पर यही बात लागू होती थी, तभी वे मनु बहन गांधी से कह सके थे कि मैं तुम्हारी माँ बन चुका हूँ। चरित्र की तरफ उनका दूसरा प्रयास संपूर्ण निर्विकारता की खोज का था। मनुष्य स्वयं को विकारों से जितना मुक्त कर सकता है, उतना ही वह स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से आकर्षित कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी को तो यहाँ तक आशा थी कि यदि वे संपूर्ण निर्विकारता साध सके तो उसमें से अपने नंबर एक के शत्रु मानने वाले को भी अपना मित्र बना देने की शक्ति विकसित की जा सकती है। इस उद्देश्य को सामने रख कर वे अपनी वैदिक और सामुदायिक साधना निरंतर चालू करते थे। इनमें वे पूरी तरह से सफल नहीं हुए, यह तो इस बात से ही सिद्ध हो जाता है कि उन्हें शत्रु मानने वाले में ऐसे भी मिले थे जिन्होंने बार बार योजना पूर्वक ठंडे कलेजे से उनके प्राण लिए थे। परंतु इतना तो शायद बहुत से लोग स्वीकार करेंगे कि वासना क्षय की दिशा में कि वे इतने आगे बढ़ गए कि उनके जैसे बहुत कम आगे गए होंगे। वैसे देखें तो गांधी जी की संपूर्ण साधना अद्वितीय की साधना थी। यह साधना उन्हें भेद से अभेद की तरफ और अलगाव से समभाव की तरफ ले गई थी।
1: बिल्कुल,
0: इस भांति स्त्री पुरुष संसाधन संबंधों के क्षेत्र में वे देह से ऊपर जाकर आत्मा की एकता की तरफ जाने के प्रयास करते थे। जैसे ही देह भाव मिटता है, वैसे ही आत्मा संपूर्ण निर्विकारता की तरफ अग्रसर हो जाती है। इसी से गांधी जी स्वयं निर्विकार होकर देह भाव को क्षीण करना चाहते थे।
1: बिल्कुल,
0: दूसरे समाज में स्त्री पुरुष दोनों को अपनी अस्मिता बनाए रखते हुए संपूर्ण समानता में ले जाना चाहते थे। भेद से अभेद की तरफ जाने की यह साधना प्राचीन है। ऐसे साधकों में हमें कार्ल मार्क्स जैसे क्रांतिकारी मिलते हैं, जिनके विचारों ने मानव समाज को आर्थिक समानता की दिशा में ले जाने हेतु पूरी मदद की थी। ऐसे साधकों में कशिश हमें सुखदेव जैसे मिलेंगे, जो जन्म के साथ ही स्त्री पुरुष देह भाव से मुक्त थे। नारी के प्रश्न को लेकर गांधी जी की साधना में मार्क्स और सुखदेव की साधना का बहुत बड़ी मात्रा में समन्वय विद्यमान था।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं। हमने जैसा कि सबके गांधी नारी प्रकरण के बारे में ढेर सारी बातों को जाना। अगले रविवार को हमारे श्रोता साथियों से हमारी फिर से मुलाकात होगी नए प्रकरण के साथ में, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनू अड़ी सब समस्या नो समाधान आपने करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मोली में जावू है, फार्म भरो जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डे

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि हम पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में बातचीत कर रहे थे, संविधान और आदिवासी में हमने जाना था भूमिजों का आंदोलन, उसी के साथ हम जान पाए थे चेरो विद्रोह के बारे में, तिलका आंदोलन के बारे में जागृति जी हमने जाना था, तमाड़ विद्रोह हमने जाना था, हो संघर्ष के बारे में भी हम जान पाए थे।
1: बिल्कुल,
0: यही आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत होने वाली है भील विद्रोह 1800 से लेकर 1925 के बारे में।
1: जी हाँ, जैसा कि अंजलि, भील विद्रोह 1800 से 1925 के बारे में अगर हम बात करें तो देश में भीलों की अलग अलग रूपों में चर्चा होती रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: भील खुददार, स्वाभिमानी और अपने हक और पहचान के लिए जान की कीमत भी लगा देने वाले विद्रोही और लड़ाके थे। अंग्रेज शासक भीलों को बर्बर और लुटेरे कहते थे, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1800 से 1925 के बीच के 125 वर्षों में अंग्रेजों और उनके पिछलग्गू देशी सामंतों के खिलाफ अनेक लड़ाइयां लड़ी। एक दौर में न केवल उनके पास राजसत्ताएं हुआ करती थी, बल्कि वे हर तरीके से साधन संपन्न थे। भीलों ने मुगलों, मराठों और राजपूतों के साथ कई बार संघर्ष किए। वर्ष 1550 तक आज के मध्य प्रदेश के झाबुआ का पूरा इलाका भील साम्राज्य था।
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन अकबर ने यहाँ इलाका राजपूतों को दे दिया था ताकि राजपूत भीलों को काबू में रख सके, और तभी से भीलों का राजपूतों से संघर्ष शुरू हो गया। राजपूत वंश और मराठों ने भीलों के अनेक समूहों का अपराधीकरण कर उनका इस्तेमाल करना शुरू किया।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, अगर यही बात करें पहला भील विद्रोह 1804 की, तो श्रोता साथियों, पहला भील विद्रोह 1804 में पेशवाओं के खिलाफ हुआ था। भारत में अब अंग्रेज आए तो ज्यादातर सम्मांत उनके आगे नतमस्तक हो गए।
1: जी हाँ,
0: नतीजन अंग्रेज राजपूत सामंतों के संरक्षक हो गए। भीलों ने जब संगठित रूप से खान देशों के सम्मंतों पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने राजपूतों की सेना के साथ भीलों से युद्ध कर उन्हें खदेड़ दिया। बाद में यही संघर्ष भील बनाम अंग्रेज संघर्ष में बदल गया, इसलिए इसे खान देश विद्रोह का नाम भी दिया गया है। इस विद्रोह से प्रेरित होकर भीलों का विद्रोह व्यापक होता चला गया। 1825 में इसने सतारा की सीमाएं लांग ली और 1831 तक अविभाजित मध्य प्रदेश के वनाचल झाबुआ क्षेत्र में फैलता हुआ मालवा तक आ गया।
1: बिल्कुल अंजलि, इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा विस्तृत शोध पर आधारित अपनी पुस्तक भील विद्रोह संघर्ष के 125 साल में लिखते हैं कि कलकत्ता गजट नामक अखबार में 1 नवंबर 1804 को एक समाचार छपा था।
0: जी बिल्कुल,
1: जिसमें लिखा गया था कि भील एक बहादुर कौम है। इस अखबार में 16 फरवरी 1809 में लिखा गया कि मध्य भारत के जितने भी दर्रे हैं उनमें से बड़वानी को छोड़कर सभी दर्रों पर भील मुखियाओं और अरबी लोगों का नियंत्रण है। अंग्रेजों ने जब जमीनों की पैमाइशी शुरू की तो पढ़े लिखे विशेष तबकों के लोगों ने ज्यादातर जमीनों का स्वामित्व अपने नाम करा लिया। जो कम पढ़े लिखे लोग थे, या हम कह सकते हैं कि जो कम स्वामित्व वाले थे, उन्हें कोई खास जानकारी न थी। ज्यादातर हम कह सकते हैं कि जो हमारे आदिवासी भाई थे वो भूमिहीन रहे हैं। वे खेती किसान के बजाय गाँव की चौकीदारी करते रहे। वर्ष 1857 की आजादी की जंग के बाद टंट्या भील एक बड़े भील नायक बनकर उभरे। उन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: 1857 के दौर में भारत के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश, विशेषकर पूर्वी एवं पश्चिम निमाड़ तथा मालवा क्षेत्र अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे। अंजलि, टंट्या भील को कुछ विश्वस्त लोगों के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
0: जी बिल्कुल,
1: उन्हें इंदौर में ब्रिटिश रेजिडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें सख्त पुलिस सुरक्षा में जबलपुर ले जाया गया, जहां उन्हें भारी जंजीरों से जकड़ कर जबलपुर जेल में रखा गया। सत्र न्यायालय जबलपुर में उन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुनाई गई और फिर 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई। फांसी के पश्चात इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर पाताल पानी रेलवे स्टेशन के नजदीक

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि गीत से पहले भील विद्रोह के बारे में जाना, यही बात करें संताल विद्रोह की, तो श्रोता साथियों, संताल विद्रोह यानी संताल हुल झारखंड के इतिहास में होने वाले सभी आंदोलनों में संभवतः सबसे व्यापक और प्रभावशाली था। यह वर्तमान झारखंड के पूर्वी क्षेत्र जिसे संताल, परगना, दामने कोह, भागलपुर व राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, में 1855 से 56 में घटित हुआ था।
1: जी,
0: यह क्षेत्र झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी समूह संतालों का निवास स्थल था। संतालों के आक्रोश का प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटिश काल में साहूकार तथा उपनिवेशिक प्रशासन दोनों ही संतालों का शोषण करते थे। दीकू यानी कि बाहरी लोगों तथा व्यापारियों द्वारा संतालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50% से लेकर 500% तक ब्याज वसूले जाने का उदाहरण मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: चूंकि आदिवासी लोग जो थे वो इन सारी चीजों को लेकर अधिक जानकार नहीं थे, इसलिए उनसे जालसाजी कर तय दर से अधिक ब्याज वसूलना व यहाँ तक कि उनकी जमीनों को भी हड़प लेना आम बात थी। जब वे ऐसी शिकायत लेकर प्रशासन या पुलिस के पास जाते तो भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी।
1: जी हाँ।
0: इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल लाइनें बिछाने के लिए बड़ी संख्या में संतालों को बेगार मजदूरों के तौर पर बताल भर्ती किया। इस घटना ने संताल विद्रोह के तत्कालीन कारण का काम किया।
1: बिल्कुल अंजलि, इन्हीं अत्याचारों की पृष्ठभूमि में संथालों ने दरोगा महेशलाल दत्त एवं प्रताप नारायण की हत्या कर दी और इसी के साथ संथाल होल की चिंगारी उठी। 30 जून 1855 को भगिनी डीह में 400 आदिवासी गांवों के लगभग 6000 आदिवासी इकट्ठा हुए और सभा में ये घोषणा हुई कि बाहरी लोगों को भगाने और विदेशियों का राज समाप्त कर सतयुग का राज स्थापित करने के लिए विद्रोह किया जाए।
0: जी,
1: नारा दिया गया, आजादी के लिए हथियार उठा लो। विद्रोहियों ने ब्रिटिश दफ्तरों एवं संस्थानों, थाना, डाकघरों व अन्य सभी ऐसे संस्थाओं पर हमले शुरू कर दिए जिन्हें वे गैर जनजातीय प्रतीक मानते थे। भागलपुर और राजमहल के बीच सभी सरकारी सेवाएं ठप कर दी गई। सरकार को संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। आखिरकार इस विद्रोह का दमन कर दिया गया।
0: जी बिल्कुल।
1: आगे चलकर अंजलि, सरकार ने संथाल लोगों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की। दुमका, देवघरा, गोड्डा व राजमहल उप जिले बनाए गए। इस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर यहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश व उनकी गतिविधि को नियंत्रित किया गया, जो आदिवासियों की एक पुरानी मांग थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया ताकि आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाई जा सके।
0: जी बिल्कुल। यही बात करें जागृति जी मुंडा विद्रोह 1885 से 1900 के बारे में, तो श्रोता साथियों, उल गुलान का अर्थ है असीम कोलाहल, यानी कि 20 वर्ष के बिरसा मुंडा ने इसकी शुरुआत की थी।
1: जी हाँ।
0: यह वह आंदोलन था श्रोता साथियों, जिसे आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए शुरू किया था। 1895 में शुरू हुई इस विद्रोह ने अंग्रेजों को बिरसा के पीछे लगा दिया। गिरफ्तारी और रिहा का दौर चला, लेकिन एक बार बिरसा जेल से छूटे तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया।
1: जी हाँ।
0: लोक चर्चा के अनुसार 1899 में क्रिसमस के दिन करीब 7000 पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुई और विप्लव्य की घोषणा की, जो जल्द ही घूटी, तमार, बसिया और रांची तक फैल गया।
1: बिल्कुल।
0: 5 जनवरी 1900 तक सारी मुंडा जमात ने हथियार उठा लिए, बहुत से पुलिस वाले मार दिए गए और करीब 100 इमारतों में आग लगा दी गई। अबुआ दिसून अर्थात अपना राज का नारा गूंज उठा। इसने लड़ने के लिए अंग्रेजों से सेना भेजी। साथ में बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया। डुम्बारी पहाड़ी पर वैसा ही एक कांड ब्रिटिश सेना ने किया, जैसा जलियावाला बाग के समय हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए। बिरसा के करीबी किसी व्यक्ति ने खबरची का काम किया और उन्हें पकड़वा लिया। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास उनकी गिरफ्तारी हुई और 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में कारागार में बिरसा मुंडा की मौत हुई। बिरसा की मौत के बाद उल गुलान आंदोलन ठंडा पड़ गया।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ संविधान निर्माण प्रक्रिया और आदिवासी को लेकर हम बात करें तो साथ ही औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इस प्रक्रिया और साहसिक संघर्षों के बावजूद सच यह भी है कि राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों के नेतृत्व और भूमिका को वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वे हकदार थे।
2: जी बिल्कुल।
1: इस उपेक्षा को संविधान बनाने की प्रक्रिया में भी देखा जा सकता है अंजलि। और इसके पीछे एक तर्क यह भी हो सकता है कि चूंकि आदिवासी समुदाय जमीन पर निजी नियंत्रण में विश्वास रखने वाला समाज नहीं है और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्था हमेशा से अन्य समाजों से अलग रही है,
2: जो
1: शायद इसीलिए भी एक केंद्रीकृत विधान के निर्माण से उन्हें दूर रखा गया। इस विषय में प्रमुख आदिवासी विद्वानों का क्या सूचना था, इस बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
3: जी बिल्कुल जागृति जी, एक तरफ जहां देश की आजादी के आंदोलन में मुख्य आदिवासी स्वर लगभग अनुपस्थित थे, वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन में अछूतों और अल्पसंख्यकों के सवाल ज्यादा तवज्जो पाने लगे थे। भारत, राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा उस दौर में चलते रहे समाज सुधार आंदोलन ने भी इस आंदोलन को राजनीति के केंद्र में स्थापित किया। संविधान के प्रारूप बनाने की पहल वर्ष 1895 में भारत का संविधान विधेयक 1895 जिसे स्वराज बिल भी कहा जाता है के साथ शुरू हो चुकी थी।
2: जी हाँ।
3: इसे किसने बनाया था इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस प्रारूपों में भी दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए किसी व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया था। इसमें संसद के दो सदन स्थापित करने की बात की गई थी, लेकिन वंचित तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इतना ही नहीं, संसद जिन विषयों के लिए कानून बनाने के लिए पात्र मानी जा रही थी उसमें भी दलित और आदिवासी समुदाय के लिए विशेष प्रावधान नहीं थे।
1: बिल्कुल अंजलि, इसके बाद वास्तव में पृथक निर्वाचन की मांग से अनुसूचित जाति या छुआछूत के प्रभावित तबकों के मुद्दे न केवल राजनीतिक के केंद्र में बल्कि आजादी के आंदोलन में भी प्रखर ढंग से उठाए जाने लगे।
2: जी बिल्कुल।
1: साथ ही संविधान निर्माण के दौरान हुई बहसों के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अपवर्जित और अंशतः समाविष्ट क्षेत्रों के बारे में हाल की संवैधानिक चर्चाओं ने भारत के मूल निवासियों की स्थिति के प्रति ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। इनकी संख्या लगभग 1.30 करोड़ है। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि ये मूल निवासी एक ऐसे देश में असभ्य शब्द का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति के संदर्भ में हुआ, असभ्य अवस्था में बने हुए हैं जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की डिंग हाँकता है। न केवल वे असभ्य रहे बल्कि उनके कामों को जरायम पेशा कहकर वर्गीकृत किया गया।
3: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने संविधान और आदिवासी को लेकर बहुत अच्छे से ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से भील विद्रोह हुआ, संताल विद्रोह के बारे में जाना, मुंडा विद्रोह के बारे में जाना, हम जैसा कि जान रहे थे संविधान निर्माण प्रक्रिया और आदिवासियों को लेकर, तो इसी विषय पर अगले रविवार को हमारी फिर से मुलाकात होगी नई बातों के साथ में।
2: जी हाँ
0: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
4: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था
5: नाना अंजलि बूंद हूँ था का।
4: अरे जागृति बूंद, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बूंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
4: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बूंदो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
7: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
4: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
6: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
7: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे
2: जैवरे सपसोरा भड़ेगा तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
8: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
9: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
10: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी निमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
11: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
12: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
13: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
14: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
15: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि श्रोता साथियों, हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे नई नई व्यंजन विधियों को लेकर ढेर सारी बातें रहती हैं। तो आज भी श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी ही व्यंजन विधियों को हम जानेंगे, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो उसी दस्तूर को निभाते हुए आइए सुनते हैं श्रोता साथियों कार्यक्रम के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आज रविवार का दिन है और इसी दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर हाजिर होते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे अलग अलग ढेर सारी व्यंजन विधियों को लेकर ढेर सारी बातें रहती हैं। तो आज भी श्रोता साथियों ऐसी ही व्यंजन विधियों को लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे कार्यक्रम से समुदाय के साथी जुड़ रहे हैं, उनके माध्यम से हम जानेंगे कि हम पहले के समय में कौन कौन से ऐसी पारंपरिक व्यंजन विधियों को बनाते थे जो कि श्रोता साथियों हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती थी। हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी सब्जियां थी जिन्हें हम सुखाकर बाद में भोजन बनाते थे और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम बिना तेल के पका सकते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती हैं। इन्हीं ढेर सारी बातों को जानेंगे श्रोता साथियों। तो आइए साथियों, सुनते हैं हमारे समुदाय साथियों की बातों को।
1: जय गुरु।
2: जय गुरु।
1: आपने हूँ नाम है
2: बबली बेल
1: के रहो
2: चखुड़िया नाथा।
1: तो आप अपना घर परिवार बल्ले से खावानू बनावो हो ने पहले ना टाइम में नवड़े ना टाइम में आपने दिखी रहो के खावानू बनावा में घणो फर्क आवी गयो है। पहले आपने घणा कनी एवी चीजे काम में लेता होता जे आपने बाप दादा खाता होता था, नवड़े ना टाइम में ये चीजे बदलाई गई है ने आपने सब भूली गया हो। तो फिर तक एनी चीज ने याद अलावा बल्ले आज आप मने कई एवी चीज बताड़ोगा जे आपने भाई बहनों ने घेरे बनावी जुए

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, जो व्यंजन विधियाँ रही और जो गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई व्यंजन विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाइयों ने बोनो जई वरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियों बोनों नो रिश्तो है जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नो भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हम या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल हम ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा डंगा पानी ने बचा डंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो चूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की इस सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी आज की संध्याकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना से। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, जिसमें आप जानेंगे महान व्यक्तित्व के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को एक नई दिशा दी है। इसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 5:30 पर। दोस्तों, इसी के बाद अगला कार्यक्रम होगा प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सभी सुन पाएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में ठीक शाम 6:00। दोस्तों, फिर हमारा अगला कार्यक्रम होगा बच्चों के लिए शिक्षाप्रद व प्रेरणादायी कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 6:30 पर। साथियों, इसी क्रम में हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारे मेहमान से, जिसे आप सभी सुनेंगे ठीक शाम 7:00। इसी के बाद दोस्तों आपको रूबरू करवाएंगे गांधी जी के विचारों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हिंद स्वराज, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 7:30 पर। साथियों, फिर हम रुक करेंगे हम और हमारा संविधान कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 8:00। साथियों, इसी के बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, जिसमें हम जानेंगे कुछ स्वास्थ्यप्रद व्यंजनों की विधि के बारे में। इसी बीच कुछ फिल्मी नगमे सुनवाएंगे आपको मनोरंजन के लिए। दोस्तों, इन नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी और दर्द भरी गजलों को ठीक रात्रि 9 से रात्रि 10 बजे तक। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सभा की कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे।

साथियों, बदलाव हथियार से नहीं विचारों और सेवा की शक्ति से भी लाया जा सकता है। जिस गांव में गांव, गरीबी और अंतिम व्यक्ति की भागीदारी हो तो वही सच्चा विकास है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, आध्यात्मिक चिंतन और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे को लेकर।
0: जी हाँ,
1: आचार्य विनोबा भावे का नाम भारतीय इतिहास में श्रोता साथियों एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाता है जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने प्रेम, अहिंसा, त्याग, सेवा और लोगों के बीच सीधे संवाद को अपना माध्यम बनाया। उनका जीवन जागृति जी हमें यह सिखाता है कि समाज में बड़े बदलाव केवल सत्ता या कानून से नहीं बल्कि लोगों के सोच और आपसी सहयोग से भी संभव है।
0: बिल्कुल अंजलि, सर्वोदय के पथ पर चलकर समाज में समानता और मानवता का संदेश देने वाले महान संत आचार्य विनोबा भावे के बारे में अगर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो भारत की धरती ने समय समय पर ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने विचारों, त्याग और कर्मों से समाज को नई दिशा दी है।
1: बिल्कुल,
0: आचार्य विनोबा भावे ऐसे ही महान संत, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। श्रोताओं, उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा, सेवा, ग्राम स्वराज और सामाजिक समानता के लिए समर्पित कर दिया। वे महात्मा गांधी जी के प्रमुख आध्यात्मिक अनुयायियों में से एक थे और उन्होंने गांधी जी के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
1: बिल्कुल,
0: विनोबा भावे के बारे में बताए तो विनोबा भावे का सबसे प्रसिद्ध योगदान भूदान आंदोलन था। उन्होंने देश भर में पैदल यात्रा करके भूमिहीन किसानों के लिए जमीन दान करने की अपील की थी। उनकी प्रेम, करुणा और अहिंसक विचारों से प्रभावित होकर अनेक भू स्वामियों ने अपनी भूमि का कुछ हिस्सा गरीबों को देने का संकल्प लिया और इसी कारण उन्हें

0: भारत के इतिहास में भूदान आंदोलन के प्रणेता के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गांगोड़े गांव में हुआ था। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। बचपन से ही वे अध्ययन, चिंतन और आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि रखते थे।
0: बिल्कुल।
1: उनका परिवार धार्मिक और संस्कारवान था। माता के विचार का उनके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ा। बचपन से ही जागृति जी, उनके भीतर सादगी, त्याग और सेवा की भावना विकसित हुई। वे सामान्य जीवन की सुविधाओं से अधिक ज्ञान और आत्म अनुशासन को महत्व देते थे। युवा अवस्था में ही उनका झुकाव आध्यात्मिक और देश सेवा की ओर बढ़ने लगा। कहा गया है कि जिस जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को सुधारना हो, वही जीवन समाज के लिए प्रेरणा बनता है।
0: बिल्कुल।
1: आचार्य विनोबा भावे के जीवन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। वे गांधी जी के विचारों, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता से बहुत प्रभावित हुए। वे गांधी जी के आश्रम से जुड़े और उनके रचनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई। गांधी जी भी विनोबा भावे की प्रतिभा, सादगी और समर्पण से प्रभावित थे। विनोबा भावे ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया।
0: जी हाँ।
1: लेकिन उनकी सोच केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी। वे चाहते थे जागृति जी कि स्वतंत्र भारत में समाज के हर वर्ग को सम्मान और अवसर मिले।
2: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने उनके जन्म और परिवार के बारे में बताया, उनके पिता का नाम नरहरि शंभुराव भावे और माता का नाम रुक्मणी देवी था। और जैसे कि विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। श्रोताओं, उनकी माता धार्मिक, सरल और संवेदनशील महिला थी। उनके व्यक्तित्व का विनोबा भावे के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा। बचपन से ही विनोबा के मन में आध्यात्मिक त्याग और सेवा की भावना विकसित होने लगी थी। अंजलि, विनोबा भावे का बचपन सामान्य बच्चों से कुछ अलग था। उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा ज्ञान, चिंतन और आध्यात्मिक विषयों में बहुत अधिक रुचि थी। वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते और जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करते थे।
0: बिल्कुल।
2: शिक्षा और ज्ञान के प्रति उनकी रुचि बहुत ज्यादा थी। विनोबा भावे बचपन से ही बहुत अत्यंत मेधावी थे। उन्हें गणित के साथ साथ संस्कृत, धर्म, दर्शन और साहित्य में विशेष रुचि थी। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे श्रोताओं, बल्कि ज्ञान को जीवन में उतारने को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे।
0: बिल्कुल।
2: युवावस्था में उनके मन में आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। अंजलि, वे भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा और संतों के जीवन से प्रभावित हुए। उन्होंने भारतीय दर्शन, भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गंभीरता अध्ययन किया।
0: बिल्कुल।
2: उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के चरित्र और विवेक का निर्माण करना होना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आचार्य विनोबा भावे का मानना था कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गांव में है। वे ऐसे गांव की कल्पना करते थे जहां लोग मिलजुल कर रहे, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें और अपने विकास के निर्णय में स्वयं भाग लें।
0: बिल्कुल।
1: उनकी सोच में ग्राम स्वराज का अर्थ केवल पंचायत का चुनाव नहीं था, इसका अर्थ था गांव अपने विकास, संसाधनों और सामाजिक जीवन में अधिक आत्मनिर्भर और सहभागी बने। आज जब हम ग्रामीण विकास, ग्राम सभा और स्थानीय रोजगार और सामुदायिक भागीदारी की बात करते हैं, तब विनोबा भावे के विचार की प्रासंगिकता हमें महसूस होती है।
2: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पा रहे हैं आचार्य विनोबा भावे के जीवन परिचय को, तो ये बातें निरंतर आगे भी हम करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि गांव और ग्रामीण समाज के प्रति विनोबा भावे की क्या सोच थी, यही बात करें भूदान आंदोलन की शुरुआत की, तो श्रोता साथियों, आचार्य विनोबा भावे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था भूदान आंदोलन। वर्ष 1951 में वे तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव पहुंचे। उस समय वहां भूमि से जुड़े सामाजिक और आर्थिक तनाव मौजूद थे। वहां कुछ भूमिहीन लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। विनोबा भावे ने जमीन के मालिकों से आग्रह किया कि वे स्वेच्छा से अपनी भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीन लोगों के लिए दान करें। इसी दौरान एक स्थानीय जमींदार ने भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि देने की इच्छा व्यक्त की। यहीं से भूदान आंदोलन को एक नई शुरुआत मिली।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि जब संपन्न व्यक्ति अपनी क्षमता का थोड़ा हिस्सा जरूरतमंद के साथ बांटता है, तब समाज में केवल मदद नहीं बल्कि विश्वास भी पैदा होता है। भूदान आंदोलन का उद्देश्य जागृति थी केवल जमीन प्राप्त करना नहीं था, इसके पीछे समाज में सहयोग और समानता की भावना भी विकसित करने का विचार था।
1: बिल्कुल,
0: विनोबा भावे ने पूरे देश में पैदल यात्रा की। वे गांव-गांव जाते, लोगों से मिलते और भूमिहीन परिवारों की समस्याओं पर चर्चा करते।
1: जी हाँ।
0: आगे चलकर ग्राम दान की अवधारणा भी सामने आई, जिसमें पूरे गांव के स्तर पर भूमि और सामूहिक संसाधनों के प्रति सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।
1: जी हाँ।
0: उनका विश्वास था कि यदि समाज के लोग अपने संसाधनों को केवल व्यक्तिगत संपत्ति न मानकर सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे, तो असमानता और संघर्ष को कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आपने भूदान आंदोलन के बारे में बताया, ग्राम दान आंदोलन के बारे में बताया, यही सर्वोदय के विचार के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो विनोबा भावे के दर्शन का केंद्र था सर्वोदय, यानी कि सबका उदय और सबका कल्याण। उनका मानना था कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। समाज का वास्तविक विकास तभी होगा जब सबसे गरीब, कमजोर और पिछड़े व्यक्ति का जीवन भी बेहतर बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: उनकी सोच थी श्रोताओं, सबका भला, सबका विकास और सबके सम्मान के साथ समाज का निर्माण। आज के समय में भी सर्वोदय का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें केवल व्यक्तिगत सफलता के बजाय सामूहिक प्रगति के बारे में सोचने की प्रेरणा देते हैं। हम देखते हैं अंजलि कि विनोबा भावे महिलाओं के सम्मान और उनकी भागीदारों के भी समर्थक थे। वे मानते थे कि समाज का विकास महिलाओं को समान अवसर दिए बिना संभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया। उनके विचारों में महिला केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली व्यक्ति नहीं थी, बल्कि समाज और राष्ट्र की महत्वपूर्ण शक्ति थी।
0: बिल्कुल जागृति जी, विनोबा भावे की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी लोगों तक स्वयं पहुंचकर संवाद करना।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने लंबी पद यात्राएं की। वे गांव में जाते, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम नागरिकों से मिलते और उनकी समस्या सुनते। उन्होंने लोगों को भाषण देने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाया। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए केवल कागजों और रिपोर्टों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोगों के बीच जाना, उनकी बातें सुनना और उनके अनुभव समझना भी उतना ही जरूरी है। यही बात करें अहिंसा और शांति के संदेश की, तो श्रोता साथियों, विनोबा भावे का विश्वास था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: उनका मानना था कि व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाकर समाज में स्थायी परिवर्तन किया जा सकता है। वे प्रेम, संवाद और नैतिक समझ के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने के पक्षधर थे। आज जब समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ जाते हैं, तब उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि बातचीत में धैर्य से कई समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। जहां संवाद समाप्त होता है श्रोता साथियों, वहां विवाद बढ़ता है, और जहां संवाद शुरू होता है वहां समाधान की संभावनाएं पैदा होती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, यही सरल जीवन और त्याग के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो विनोबा भावे जी का जीवन बहुत ही सरल था। वे सादगी, आत्म अनुशासन और श्रम को बहुत महत्व देते थे।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने कभी धन संपत्ति और व्यक्तिगत सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया ही नहीं। वे समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के बीच रहे और उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास किया।
0: बिल्कुल,
1: विनोबा भावे जी का जीवन स्वयं उनके विचारों का उदाहरण था। वे जो कहते थे उसे अपने आचरण में भी उतारते थे, और यही कारण था अंजलि कि लोग उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि संत और मार्गदर्शक के रूप में भी देखते थे। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे को उनके महान सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उनके सामाजिक योगदान, आध्यात्मिक चिंतन और मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की राष्ट्रीय मान्यता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आचार्य विनोबा भावे को उनकी सामाजिक आध्यात्मिक योगदान के लिए देश ने सम्मान दिए। उन्हें जैसा कि आपने बताया कि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना जीवन सादगी, सेवा और सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित किया। 15 नवंबर 1982 को महाराष्ट्र के पवनार में उनका निधन हुआ। उनका भौतिक जीवन समाप्त तो हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीण समुदायों और शांति के पक्षधर लोगों को प्रेरणा देते हैं। आचार्य विनोबा भावे का जीवन हमें यह समझने का अवसर देता है श्रोता साथियों, कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल सत्ता और कानून ही रास्ता नहीं है, बल्कि व्यक्ति की अंतरात्मा, सेवा की भावना, आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण समाज भी परिवर्तन की बड़ी शक्ति बन सकते हैं। उन्होंने अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित किया जिनकी आवाज अक्सर समाज में पीछे रह जाती है। भूमिहीन परिवारों की समस्याओं को उन्होंने केवल एक आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना से जोड़कर समझा।
1: बिल्कुल,
0: आज उनके विचारों को वर्तमान समय से जोड़कर देखना जरूरी है। हमारे गांव में यदि कोई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई किसान संकट में है, कोई बच्चा शिक्षा से दूर है या कोई महिला अपने अधिकारों से अनजान है, तो समाज की जिम्मेदारी है कि वह उसके साथ खड़ा हो। विनोबा भावे का जीवन हमें सामुदायिक भागीदारी की ताकत समझाता है। जब लोग मिलकर किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तो समाधान में स्थायित्व और अपनापन दोनों होता है।
1: जी हाँ अंजलि, तो अंत में ये कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से कि आचार्य विनोबा भावे भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से है जिनका जीवन त्याग, सेवा, सत्य, अहिंसा और मानवता का जीवंत उदाहरण है। जैसा कि अभी आपने बताया था, उन्होंने सत्ता और पद की राजनीति के बजाय समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। भूदान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हृदय परिवर्तन के द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन संभव है।
0: बिल्कुल,
1: उनका सर्वोदय दर्शन हमें याद दिलाता है कि समाज की वास्तविक प्रगति तब होती है जब विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती है। साथियों, आचार्य विनोबा भावे का जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अपने लिए जीना सामान्य है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही जीवन की सच्ची महानता है। उनका जीवन हमें संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम अपने समाज में प्रेम, समानता, सहयोग और सेवा की भावनाओं को मजबूत करेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जागृति जी, सेवा छोटी हो या बड़ी, यदि उसके पीछे निस्वार्थ भावना हो तो वह समाज में बदलाव की शुरुआत बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं विचारों और प्रेरणा के साथ हम आचार्य विनोबा भावे जी को उनकी जयंती पर सादर नमन करते हैं और आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली जो बातचीत है जागृति जी, वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,

0: की कसम।
1: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर हो साथियों कार्यक्रम कथा कहानी को एक नई शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है गुरु का महत्व। जी हाँ दोस्तों, जीवन में गुरु ना हो तो हम कभी आगे ही ना बढ़ पाए। इसलिए आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमारे जीवन में एक गुरु का क्या महत्व होता है। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का शीर्षक है गुरु का महत्व। जी हाँ दोस्तों, आज की 21वीं सदी की युवा पीढ़ी के पास अवसरों की कोई भी कमी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इंटरनेट, तकनीक और असीम संभावनाओं से भरी इस दुनिया में हर युवा आसमान छूना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार बिना कप्तान के जहाज समंदर की लहरों में भटक जाता है, उसी प्रकार सही मार्गदर्शन के बिना युवा ऊर्जा अक्सर गलत दिशा में बह जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी है राहुल की, जो कि आधुनिकता और भाग दौड़ से भरी दुनिया का एक आम युवा है। राहुल ने एक प्रतिष्ठित संस्थान से प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की थी। उसके पास विचारों की कोई कमी नहीं थी। वो एक ऐसा सामाजिक उद्यम शुरू करना चाहता था जो ग्रामीण भारत के पारंपरिक कारीगरों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ सके। लेकिन दोस्तों, जब राहुल ने अपने इस सपने को समाज के पैमाने पर तोड़ना चाहा, तो उसे चारों तरफ से हताशा ही मिली। रिश्तेदारों ने ताने कसे, दोस्तों ने इसे अव्यवहारिक मूर्खता कहा और यहाँ तक कि उसके अपने भीतर का डर भी उसे रोकने लगा। नौकरी की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है बेटा, ये समाज सुधारने चले हो, उसके पिता के शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगते थे। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसके सपने सच होने के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, वो गहरे तनाव और अवसाद की स्थिति में पहुंच गया। टूटे हुए मनोबल के साथ राहुल एक शाम अपने पुराने कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर वी के शर्मा के घर पहुंचा। डॉक्टर शर्मा केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे कॉलेज के उन चुनिंदा गुरुओं में से थे जो छात्रों की आंखों में छुपे डर और उनके दिलों की थाह को आसानी से पहचान लेते थे। राहुल ने अपनी सारी पीड़ा, अपना असमंजस और अपने अंदर चल रहे द्वंद को प्रोफेसर के सामने उड़ेल दिया। उसने अनम आंखों से कहा, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सही हूँ या गलत। सब कहते हैं कि मेरा आइडिया पागलपन है। क्या वाकई युवा होने का मतलब सिर्फ एक सुरक्षित 9 से 5 की नौकरी करना है? क्या मेरे सपने सच होने लायक नहीं है? तभी डॉक्टर शर्मा अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने राहुल के कंधे पर अपना हाथ रखा जिसमें गहरी आश्वस्ति और स्नेह था। उन्होंने राहुल को बैठने का इशारा किया और चाय का कप बढ़ाते हुए एक गहरी बात कही, राहुल एक साधारण शिक्षक तुम्हें किताबों के पन्ने पलटना सिखाता है और परीक्षा पास करवाता है, लेकिन एक सच्चा शिक्षक तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर झांकना सिखाता है। वो तुम्हें ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि वो तुम्हें ये सिखाता है कि कैसे सोचना है। प्रोफेसर शर्मा ने राहुल को समझाया कि युवा अवस्था मनुष्य के जीवन का सबसे ऊर्जावान लेकिन सबसे कच्चा दौर होता है। इस अवस्था में शिक्षक की भूमिका किसी कुशल जौहरी या कुम्हार जैसी होती है। दिशाहीन ऊर्जा को सही आकार देना युवा अवस्था में शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का सैलाब होता है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा न मिले तो ये विनाश हो सकती है और व्यर्थ बह सकती है। शिक्षक इस ऊर्जा को एक सही रास्ते पर मोड़ने का काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक इंजीनियर नदी के तेज बहाव को बांध बनाकर बिजली या उपजाऊ पानी में बदल देता है। इसी के साथ तुमसे कहना चाहूँगा कि असफलता के अंधकार में उम्मीद का दिया जलाना बहुत ही कठिन होता है। दुनिया आपको तब तक सराहती है जब आप सफल होते हैं, लेकिन एक शिक्षक ही वो शख्स होता है जो आपकी असफलता पर भी आपका हाथ थाम कर कहता है, कोई बात नहीं, गिरना बुरा नहीं है, गिरे रह जाना बुरा है। वो आपको हार से लड़ने की असली शक्ति देता है। और इसी के साथ चरित्र और विवेक का निर्माण भी बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि गूगल और AI के इस दौर में जानकारी आसानी से हमें मिल जाती है, लेकिन उस जानकारी को ज्ञान और ज्ञान को विवेक में बदलने की कला केवल एक गुरु ही सिखा सकते हैं। तकनीक आपको साधन दे सकती है, पर जीने की कला और नैतिक मूल्य एक शिक्षक ही देता है। दोस्तों, प्रोफेसर शर्मा की इन बातों ने राहुल के भीतर एक नया आत्मबल फूंक दिया था। उसे समझ आ गया था कि उसके सपनों में कोई खोट नहीं थी, बस उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए अपने भीतर के डर को हराना था। राहुल ने बिना किसी परवाह किए अपने स्टार्टअप पर पूरी शिद्दत से काम किया। शुरुआती महीनों में उसे इस भारी संघर्ष करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब भी वो हताश होता, प्रोफेसर शर्मा की कही हुई बातें और उनका समर्थन उसे फिर से खड़ा होने की ताकत दे देता था। आज 3 साल बीत चुके थे, राहुल का वो छोटा सा विचार आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है जो देश के हजारों ग्रामीण कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रहा है।
उसे कई राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन अपनी हर सफलता का श्रेय वो सबसे पहले अपने गुरु डॉक्टर शर्मा को देता है। तो दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के युवा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया के दबावों के दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई रातों रात सफल होना चाहता है, जिससे उनके भीतर मानसिक तनाव और अधीरता बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक, गुरु या मार्गदर्शक का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। चाहे वो आपके स्कूल का शिक्षक हो, कॉलेज का प्रोफेसर हो या जीवन का कोई अनुभवी व्यक्ति, उनका सम्मान करें। उनके अनुभव आपके जीवन के सबसे बड़े रक्षक और शॉर्टकट साबित हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक बेहतरीन शिक्षक आपको सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बनाता, बल्कि आपको एक बेहतर और संवेदनशील इंसान भी बनाता है, जो दुनिया को बदलना जानता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी के लिए शिक्षक का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट और किताबों से ज्ञान तो आसानी से मिल रहा है, पर विवेक, धैर्य और चरित्र का निर्माण केवल एक शिक्षक ही कर सकता है। चाहे वो स्कूल का शिक्षक हो, कॉलेज का प्रोफेसर हो या जीवन का कोई अनुभवी मार्गदर्शक, उनका सम्मान करें दोस्तों। उनके अनुभव आपके जीवन के सबसे बड़े शॉर्टकट साबित हो सकते हैं। याद रखिए, एक अच्छा शिक्षक आपको जीवन भर के लिए जीना सिखाता है, और वही जीना हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुरु के महत्व को लेकर। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है, वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और गीत से पहले मैंने आपको गुरु के महत्व को लेकर बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी। कहा गया है दोस्तों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हम देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही शिक्षक यानी गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। अगर माता पिता हमें इस भौतिक संसार में जन्म देते हैं तो एक शिक्षक हमारे व्यक्तित्व को गढ़कर हमें इस योग्य बनाता है कि हम इस संसार में ससम्मान जी सके। हम देखते हैं कि शिक्षक शब्द केवल एक पेशे तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन संस्था है जो अज्ञानता के अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। आज 21वीं सदी के इस आधुनिक तकनीक और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी युग में जहां सूचना और ज्ञान का अंबार लगा है, वहां भी एक सच्चे शिक्षक की प्रासंगिकता और उसका महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। हम कह सकते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि युवा अवस्था मानव जीवन का सबसे संवेदनशील, ऊर्जावान और निर्णायक पड़ाव होता है। ये वो उम्र है जब एक युवा के मन में भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने होते हैं, जैसे कि राहुल के मन में थे। लेकिन साथ ही भटकाव, असुरक्षा और भ्रम की स्थिति भी सबसे ज्यादा इसी दौर में होती है, जैसे कि राहुल के मन में था। ऊर्जा का सही प्रबंधन, यानी कि युवा पीढ़ी के पास असीम ऊर्जा और शारीरिक क्षमता तो होती है, अगर ये ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो इतिहास रचा जा सकता है। लेकिन दिशाहीन होने पर यही ऊर्जा विनाश का कारण भी बनती है। और इसी के साथ दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये कहना चाहेंगे कि शिक्षक जो है वो अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। एक युवा को केवल विषयों की जानकारी नहीं देते, बल्कि उन्हें सही और गलत में अंतर करना भी हमें सिखाते हैं। शिक्षा के माध्यम से शिक्षक बच्चों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान का दीपक जलाते हैं, शिक्षक जीवन महकाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, एक विद्यार्थी का अच्छा इंसान बनना भी उतना ही आवश्यक है। और दोस्तों एक अच्छा शिक्षक हाथ पकड़कर नहीं, हौसला देकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। हर सफल व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी शिक्षक का योगदान अवश्य होता है। शिक्षक विद्यार्थी को, युवाओं को ये बताते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से मिलती है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए सही दिशा और लगातार मेहनत करनी भी बहुत जरूरी है। और शिक्षक युवाओं की रुचि और क्षमता को पहचान कर उसे सही मार्ग भी दिखाते हैं। हम कह सकते हैं कि सपनों को केवल देखो नहीं, उन्हें पूरा करने का साहस भी रखो, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही सिखाते हैं। असफलता से सफलता तक का जो सफर होता है हमारे जीवन में, वो भी हमें एक शिक्षक ही पार करवाते हैं। जीवन में असफलता आना कोई अंत नहीं होता है, लेकिन कई बार हमारे युवा साथी उससे घबरा जाते हैं। तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि एक शिक्षक विद्यार्थी को, युवा को ये सिखाते हैं कि गलती से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। और एक अच्छा शिक्षक युवाओं की कमियों पर केवल ध्यान नहीं देते, बल्कि उनकी खूबियों को पहचान कर उन्हें मजबूत बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आज की मेहनत ही तुम्हारी कल की पहचान बनेगी। और दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि शिक्षक वो व्यक्ति है जो युवाओं के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान कर उन्हें सफलता की दिशा देते हैं। वो स्वयं शायद मंच पर खड़े होकर प्रसिद्ध न हो, लेकिन उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी जब सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। एक शिक्षक के शब्द कभी कभी विद्यार्थी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए शिक्षक का सम्मान केवल इसीलिए नहीं होना चाहिए कि वो हमें पढ़ाते हैं, बल्कि इसीलिए भी कि वो हमें अपने सपनों पर विश्वास करना भी सिखाते हैं। कहा गया है कि एक शिक्षक की मेहनत का परिणाम केवल एक विद्यार्थी की सफलता नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र के रूप में भी सामने आती है। अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि गुरु वो दीप है जो स्वयं जलकर हजारों जीवन रोशन करते हैं। गुरु वो विश्वास है जो कहते हैं रुको मत, आगे बढ़ो, क्योंकि जहाँ शिक्षक का मार्गदर्शन होता है वहाँ सपनों को मंजिल मिलने की राह जरूर मिलती है। तो दोस्तों ये थी कहानी और इससे जुड़ी कुछ बातें। अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हमें विदा लेना होगा। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज जो कहानी सुनाई और उस कहानी से जुड़ी कुछ बातें भी रही, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई प्रेरणादायी शिक्षाकृत कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूं मैं बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी मैं हाजिर होती हूं तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानी आपको सुनवाती हूं, जो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी सीख देती है, और इन कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ अलग बातों को सीख पाते हैं। तो आज भी मैं कार्यक्रम में कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरू में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज भी मैं आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। आज हमारी कहानी का शीर्षक है आखिरी रोटी। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले एक छोटे से गाँव में एक गरीब माँ और उसका छोटा बेटा रहते थे जिसका नाम था गोपाल। उनका घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और रसोई में अक्सर खाली बर्तन ही दिखते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। पूरा दिन बीत गया था लेकिन घर में खाने के लिए सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। माँ ने रोटी को हाथ में लिया और गहरी सांस ली। माँ ने रोटी गोपाल को देते हुए कहा, बेटा तुम खा लो, तुम छोटे हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। गोपाल ने रोटी को देखा, फिर माँ की ओर देखा। माँ आपने कुछ खाया, उसने पूछा। माँ मुस्कुरा दी, मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। गोपाल समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है। वह रोटी लेकर बाहर चला गया। वह सोच रहा था, अगर मैं खा लूं तो माँ भूखी रहेगी और माँ खा ले तो मैं भूखा रहूंगा। बच्चों, उसके छोटे से दिल में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत कमजोर था, कांप रहा था और उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना है? गोपाल के हाथ में वही आखिरी रोटी थी। गोपाल कुछ पल चुप रहा। बच्चों, उसने सोचा कि अगर मैं ये रोटी दे दूं तो माँ और मैं दोनों भूखे रह जाएंगे। फिर उसने बूढ़े आदमी की हालत देखी और बिना कुछ बोले वह रोटी उसके हाथ में रख दी। गोपाल घर लौटा। माँ ने पूछा, रोटी खा ली? गोपाल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उस रात दोनों भूखे सो गए, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत सारे अनाज के बोरे रखे थे। माँ हैरान रह गई, यह सब कहाँ से आया? तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया, लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं लग रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी किसी भूखे को दे दी, इससे बड़ा दिल कोई नहीं रख सकता। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उन्हें अनाज मिल गया, सबसे बड़ी बात यह थी उन्होंने दूसरों के लिए जीना सीख लिया था। तो बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि सच्ची इंसानियत वही है जब हम अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत देखें। छोटा त्याग भी जीवन बदल सकता है और दिल से किया गया अच्छा काम कभी बेकार नहीं होता। बच्चों, अक्सर हमारे जीवन में भी बहुत सी बार ऐसा होता है, हम पहले खुद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। बहुत सी बार हम अपने माता पिता को लेकर भी खुद स्वार्थी हो जाते हैं। पहले हम अपने बारे में सोचते हैं और फिर माता पिता के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी इंसान हो, सबसे पहले दूसरों की मदद करनी है, फिर हमारी खुद की मदद करनी है। जैसा कि गोपाल के पास एक ही रोटी थी, लेकिन फिर भी उसने उस बूढ़े आदमी की भूख को कम करने के लिए वो रोटी उसे दे दी। तो इस तरीके से बच्चों, हमें ये कहानी बहुत ही प्यारी सी सीख देती है। इस कहानी की गहराई यही है कि जब आपके पास कुछ भी न हो, तब भी आप देने का हौसला रखें, वहीं से इंसान महान बनता है। तो बच्चों, यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। आगे एक और प्यारी सी कहानी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी, यही अब हमारी अगली कहानी है, बूढ़ा कुम्हार और अधूरी मिट्टी। जी हाँ बच्चों, एक शांत गांव में हरिदास नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसके हाथों में जादू था, मिट्टी के ऐसे घड़े बनाता कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसका एक बेटा था रवि। रवि तेज था लेकिन धैर्य नहीं था। एक दिन हरिदास चाक चला रहा था। रवि बोला, बाबा ये सब पुराना तरीका है, मैं जल्दी जल्दी घड़े बनाना चाहता हूँ। हरिदास मुस्कुराया, जल्दी में बनाई चीज टिकती नहीं है बेटा। रवि हंस पड़ा, आज के जमाने में तेज चलना पड़ता है बाबा। रवि ने खुद चाक संभाल लिया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी उगाई, पानी मिलाया और घड़ा बनाने लगा। कुछ ही देर में घड़ा बन गया। रवि खुश होकर बोला, देखा बाबा, आपने पूरा दिन लगाया, मैंने आधे घंटे में बना दिया। हरिदास ने घड़े को ध्यान से देखा, फिर धीरे से पूछा, इसमें ठहराव कहाँ है रवि? रवि चिढ़ गया, आप हर चीज में क्यों कमी ढूंढते हो? अगले दिन रवि अपने बनाए घड़े बाजार ले गया। एक ग्राहक ने घड़ा उठाया, कितने का है? रवि बोला, 50 रुपए। ग्राहक ने घड़े को थपथपाया और अचानक ठक, घड़ा बीच से फट गया। ग्राहक गुस्से में, ये क्या मजाक है? बच्चों, रवि शर्मिंदा हो गया। रवि घर लौटा, हरिदास ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने गुस्से में कहा, लोग ही बेकार हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। हरिदास शांत स्वर में बोला, लोग नहीं, घड़ा अधूरा था। रवि चुप हो गया। उस रात रवि धीरे से बोला, बाबा क्या सच में मैं गलत हूँ? रविदास ने उसकी ओर देखा और कहा कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे मानना और सीखना जरूरी है। बच्चों, रवि की आंखें झुक गई। उसने पिता से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? हरिदास ने मिट्टी उगाई और कहा, देखो बेटा, मिट्टी को समझना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है, जल्दी करोगे तो वह टूट जाएगी। रवि यह सब बातें ध्यान से सुन रहा था। और इंसान भी मिट्टी की तरह ही होता है, हरिदास बोला, अगर खुद को समय नहीं दोगे तो तुम भी अंदर से टूट जाओगे। बच्चों, फिर होती है नई शुरुआत। अगले दिन रवि फिर चाक के पास आया। इस बार उसने धीरे धीरे मिट्टी उठाई। हरिदास ने पूछा, आज जल्दी नहीं है? रवि हल्का मुस्कुराया, आज सीखना है, बनाना नहीं। दिन बीतते गए। रवि अब हर घड़ा ध्यान से बनाता। कभी घड़ा बिगड़ जाता तो गुस्सा नहीं करता, वह खुद से कहता, अब मैं सीख रहा हूँ। कुछ महीनों बाद बच्चों, रवि ने घड़ा बनाया। हरिदास ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में चमक आई। अब इसमें जान है बेटा, रवि ने पूछा, सच में? हरिदास ने कहा, अब तुम सिर्फ घड़ा नहीं, अपना धैर्य बना रहे हो बेटा। रवि फिर बाजार गया और वही ग्राहक मिला। उसने फिर पूछा, कितने का है? रवि ने कहा, पहले देखिए। ग्राहक ने घड़ा उठाया, थपथपाया। इस बार घड़ा मजबूत था। वो मुस्कुराया, अब बात बनी है। रवि घर लौटा, बाबा इस बार सब घड़े बिक गए। रविदास ने मुस्कुराकर पूछा, और तुमने क्या सीखा? तो बच्चों, रवि ने बताया कि जल्दी में कुछ नहीं मिलता, धीरे सबसे बड़ी ताकत है और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हरिदास ने सिर हिलाया और कहा कि अब तुम सच में कुम्हार बन गए हो। तो बच्चों, ये कहानी हमें बहुत ही प्यारे से सीख देती है कि धैर्य के बिना कोई भी काम अधूरा रह सकता है। जल्दी सफलता नहीं, सही तरीका निभाना बहुत जरूरी है। और अक्सर हम बहुत सारी चीजों को लेकर ये सोचते हैं कि ये तो मुझे आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, यकीन मानिए, हर पल हमें कुछ न कुछ सीखते रहने की जरूरत है। हम पशुओं से कुछ सीख सकते हैं, हम हमारे बड़ों छोटों हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख ले सकते हैं। तो बच्चों, हर इंसान एक मिट्टी की तरह ही होता है, अगर खुद को समय दोगे तो मजबूत बनोगे, अगर जल्दबाजी करोगे तो टूट जाओगे मटकी की तरह। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी, बूढ़ा कुम्हार और अधूरी मिट्टी। आशा करती हूँ बच्चों की आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

बच्चों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, नई प्रेरणादायी कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के सजाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से घबराते नहीं, मुश्किलों के आगे अपने कदम कभी नहीं रोकते। जी हाँ, हर ठोकर से सीखो और फिर आगे बढ़ते जाओ। अपने सपनों को मेहनत से हकीकत बनाते जाओ। याद रखो, हौसला है तो कोई सपना बड़ा नहीं है।

0: हो गई थी। वे मन से जेल जाने को भी तैयार हुई। वहाँ खाने पीने को क्या मिलेगा, यह उनकी चिंता का सवाल नहीं था। गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम अपने खाने संबंधी नियम जेल अधिकारी को बता देना, वे लोग तुम्हारे बताए अनुसार खाने को न दें तो उनके खिलाफ उपवास कर देना।
1: जी हाँ।
0: जब यह बात गांधी जी ने कही तब कस्तूरबा ने कहा कि आप तो मुझे मारने की बात करते हैं। तब गांधी जी ने कहा कि तुम जेल में मरोगी तो मैं तुम्हें जगदम्बा की तरह पूछूंगा। और सचमुच 3 दशकों बाद कस्तूरबा ने जब जेल में ही प्राण त्यागे तब गांधी जी रोजाना उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते थे। इस प्रकार कस्तूरबा और गांधी जी के पति बने से शुरू करके एक दूसरे को जगदम्बा समझकर पूछे वहां तक वे पहुंचे थे। यह संबंध जबरदस्ती या क्रूरता का हरगिज नहीं था।
1: बिल्कुल
0: बुद्धि में, ज्ञान में, चिंतन में, सिद्धांत निष्ठा में दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई थी, ये सच है। पर प्रेम, समझौता, एक दूसरे को समझने का प्रयास, श्रद्धा, निर्विकारता और समानता के भाव के कारण यह संबंध दिनों दिन अधिकाधिक पुनित होता गया था।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, जैसा कि हमने पहले देखा कि गांधी जी ने वैवाहिक जीवन में कस्तूरबा की सहमति से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। गांधी जी ये मानते थे कि मनुष्य समझदार होता है तभी से सतत आत्म संयम का जीवन जीना शुरू कर देता है।
0: बिल्कुल।
1: वही अंजलि जी, मनुष्य और पशु के बीच यह मुख्य भेद रेखा है। वे ये भी मानते थे साथियों कि ब्रह्मचारी विहीन जीवन शुष्क और पशुवत बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जानवर स्वभाव से निरंकुश है, मनुष्य का मनुष्यत्व स्वेच्छा से अंकुशित बनने में है। गांधी जी व्रत पालन के संबंध में स्वयं के बारे में जितने आग्रही और कठोर थे उतने दूसरों के संबंध में नहीं थे।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने एक मित्र से कहा था कि तुम कोई व्रत न ले सको तो उसमें कोई हानि नहीं है, यदि तुम कोई व्रत लो और फिर उसे छोड़ने को मजबूर हो जाओ तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, गांधी जी द्वारा देश को सुझाए हुए कार्यक्रमों में रचनात्मक कार्यों का कार्यक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल।
1: अलबत्ता कांग्रेस ने अहिंसक आंदोलन पर जितना ध्यान दिया उतना इस कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दिया गया था। रचनात्मक कार्यक्रम में स्त्रियों की जागृति सम्बन्धित कार्यों का भी समावेश था। साथियों, गांधी जी ने शहरों में रहने वाली और समाज का काम करने वाली बहनों को गांव में जाकर रचनात्मक कार्यों के साथ जुड़ने की सलाह दी थी।
0: बिल्कुल।
1: गांधी जी के आसपास की अनेक महिलाओं ने गांधी जी की इस सलाह को स्वीकार भी किया था। अंजलि जी, वर्धा छोड़कर गांव जाने वालों में पहली मीरा बहन थी। गांधी जी उनके पीछे पीछे सेवाग्राम भी गए थे। मीरा बहन ने तो बाद का संपूर्ण जीवन ही स्त्री जागृति, खादी कार्य और रचनात्मक कार्यों में बिताया था। वहीं गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने हिमालय की तलहटी में जाकर गो सेवा का भी काम किया था।
0: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, बात करें, बीबी अमतू सलाम ने गांधी जी के जाने के बाद खादी ग्रामोद्योग का काम पंजाब में व्यापक रूप से किया था। चीनी आक्रमण के बाद उन्होंने भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर इसी प्रवृत्ति को व्यापक पैमाने पर शुरू किया था। आशा देवी आर्य नायकम ने देश में नई तालीम के काम का शुभारम्भ अपने पति के साथ किया था। गांधी जी की मृत्यु से लेकर ठेठ अपने प्राण त्याग तक उन्होंने यही काम किया था। मार्जरी साइकस ने भी आशा देवी की तरह नई तालीम और शांति सेना के काम किए थे। प्रेमाताई केटक ने महाराष्ट्र में रचनात्मक कार्यों की धूम चलाई थी। रमा देवी और मालती देवी चौधरी ने उड़ीसा में रचनात्मक कार्यों द्वारा नारी जागृति ला दी थी।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी नारी प्रकरण को लेकर ढेर सारी बातें चल रही हैं, ये बातें आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी यहाँ मनोरंजन करवाते हैं साथियों को एक और पैरे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। वहीं अब बात करें तो श्रोता साथियों, दक्षिण भारत में डॉक्टर सौंदरम ने मुदेर जिले में ग्राम विद्यापीठ का सफलता के साथ संचालन किया था। कर्नाटक की कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया था। कस्तूरबा की याद में जब गांधी जी जेल में थे कशिश, तभी जो राशि इकट्ठा हुई थी उससे कस्तूरबा स्मारक निधि स्थापित हुआ था। इस संस्था ने पूरे देश में महिलाओं और बच्चों की सेवा के काम किए थे। आसाम में अमल प्रभा दास तो वहाँ की सबसे लोकप्रिय रचनात्मक कार्यकर्ता थी। उत्तराखंड में इंग्लैंड से आई सरला बहन ने कोसानी में कार्यालय खोलकर नारी शिक्षण का काम किया था। दक्षिण में यशोधरा, दासप्पा और लक्ष्मी मेनन के नाम सहज ही याद आने जैसे हैं। व्यय सीमा की गोरी देवी और श्रीमती तिरखा ने जीवन भर रचनात्मक कार्य किए थे। संक्षेप में यूँ कहा जा सकता है कि बहनों ने रचनात्मक कार्य के द्वारा उनमें विद्यमान सृजन शक्ति का उपयोग राष्ट्र सेवा और विशेष रूप से गरीब लोगों की सेवा में किया था।
1: जी बिल्कुल साथियों, इसी बात ही स्वराज संग्राम में भी स्त्रियों में जिस तरह से जागृति आई थी, वैसे ही अहिंसक संग्राम को आगे बढ़ाने में महिलाओं का सहयोग भी कम न था।
0: बिल्कुल,
1: कस्तूरबा, सरोजनी नायडू, कल्पना देवी चट्टोपाध्याय जैसे नाम तो राष्ट्रीय स्तर पर गिने ही जा सकते हैं, पर प्रादेशिक स्तर पर काम करने वाली महिलाओं का योगदान इनसे जरा भी कम नहीं माना जा सकता। गुजरात में गंगा बहन वैद, मणि बहन पारिक, नदुबा कानूनगो, मृदुला आसर, मिठू बहन पेटीट, जुत्सना बहन शुक्ल और अन्य बहनों का स्वराज के संग्राम में योगदान मामूली नहीं था।
0: बिल्कुल,
1: वहीं पूर्ववर्ती आसाम, बंगाल व उड़ीसा में जिन बहनों ने रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया था, उन्होंने स्वराज संग्राम में भी भाग लिया था।
0: बिल्कुल,
1: मुंबई में गोशी बहन पिटिट, पेरिन बहन कैप्टन, सोफिया वाडिया, महाराष्ट्र में प्रेमा बहन कटंक और सुशीला पे, दिल्ली में अरुणा आसफ अली और विद्यावती, कलकत्ता में नैली सेन गुप्ता, श्रीमती चितरंजन दास, संयुक्त प्रांत में कमला नेहरू, बिहार में प्रभावती नारायण, इन सभी के नाम तो फौरन ध्यान में आ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वहीं अन्य प्रांतों और जरूरी प्रांतों में भी सत्याग्रह में आगवानी करने वाली बहनों की संख्या भी कम नहीं थी। इन और ऐसी हजारों बहनों की राष्ट्रभक्ति, सेवावृत्ति और त्यागवृत्ति को जागृत करने वाले किसी एक व्यक्ति का कोई नाम पूछेगा तो सब एक स्वर में कह उठेंगी कि वे थे गांधी जी। गांधी जी ने अनेक रुचियों वाले लोगों को आकर्षित किया था, उनमें अनेक प्रकार की महिलाएं भी थी। अंजलि जी, बहनों को इतनी बड़ी संख्या में आकर्षित कर पाने का कारण ज्ञात करें तो वह मिलेगा गांधी जी के चरित्र में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे साथियों, तब गोखले जी ने उनके बारे में जो सम्मान भरे वचन कहे थे, उनमें से यह एक था कि जिनके पास जाने से विकार समाप्त हो जाए, ऐसे जो दो व्यक्ति मैंने देखे हैं, एक मेरे पूज्य गुरु महादेव गोविंद रानाडे और दूसरे एम के गांधी।
0: बिल्कुल,
1: गोखले से भी वर्षों पूर्व एक अंग्रेज महिला श्रीमती मिली ग्रेहाम पोलाक ने गांधी जी के बारे में इसी आशय की बात कही थी कि उनका चरित्र ही ऐसा था जैसे मैं अपनी किसी सहेली के समक्ष अपनी निजी से निजी प्रश्नों की चर्चा कर सकती हूँ, वैसे गांधी जी के साथ भी कर सकती हूँ। गांधी जी ने स्वयं ऐसा दावा किया था कि वे हजारों स्त्रियों के संपर्क में आए होंगे, पर उनके साथ व्यवहार करने में किसी ने भी संकोच महसूस नहीं किया।
0: बिल्कुल, यही बात करें तो श्रोता साथियों, चारित्रिक विकास की दिशा में गांधी जी का प्रमाण दो प्रकार का था। इनमें से एक का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, वे प्रत्येक पुरुष में स्त्रियों के गुणों का और प्रत्येक स्त्री में पुरुषों के गुणों का विकास चाहते थे।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी पर

0: नहीं हुए, यह तो इस बात से ही सिद्ध हो जाता है कि उन्हें शत्रु मानने वाले में ऐसे भी मिले थे जिन्होंने बार बार योजना पूर्वक ठंडे कलेजे से उनके प्राण लिए थे। परंतु इतना तो शायद बहुत से लोग स्वीकार करेंगे कि वासना क्षय की दिशा में कि वे इतने आगे बढ़ गए कि उनके जैसे बहुत कम आगे गए होंगे। वैसे देखें तो गांधी जी की संपूर्ण साधना अद्वैत की साधना थी। यह साधना उन्हें भेद से अभेद की तरफ और अलगाव से संभाव की तरफ ले गई थी।
1: बिल्कुल,
0: इस भांति स्त्री पुरुष संसाधन संबंधों के क्षेत्र में वे देह से ऊपर जाकर आत्मा की एकता की तरफ जाने के प्रयास करते थे। जैसे ही देह भाव मिटता है वैसे ही आत्मा संपूर्ण निर्विकारता की तरफ अग्रसर हो जाती है। इसी से गांधी जी स्वयं निर्विकार होकर देह भाव को क्षीण करना चाहते थे।
1: बिल्कुल,
0: दूसरे समाज में स्त्री पुरुष दोनों को अपनी अस्मिता बनाए रखते हुए संपूर्ण समानता में ले जाना चाहते थे। भेद से अभेद की तरफ जाने की यह साधना प्राचीन है। ऐसे साधकों में हमें कार्ल मार्क्स जैसे क्रांतिकारी मिलते हैं, जिनके विचारों ने मानव समाज को आर्थिक समानता की दिशा में ले जाने हेतु पूरी मदद की थी। ऐसे साधकों में कशिश हमें सुखदेव जैसे मिलेंगे जो जन्म के साथ ही स्त्री पुरुष देह भाव से मुक्त थे। नारी के प्रश्न को लेकर गांधी जी की साधना में मार्क्स और सुखदेव की साधना का बहुत बड़ी मात्रा में समन्वय विद्यमान था।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं। हमने जैसा कि सबके गांधी नारी प्रकरण के बारे में ढेर सारी बातों को जाना। अगले रविवार को हमारे श्रोता साथियों से हमारी फिर से मुलाकात होगी नए प्रकरण के साथ में, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं जमी माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
4: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
3: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

फागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि हम पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में बातचीत कर रहे थे, संविधान और आदिवासी में हमने जाना था भूमिजों का आंदोलन, उसी के साथ हम जान पाए थे चिरो विद्रोह के बारे में, तिलका आंदोलन के बारे में जागृति जी हमने जाना था, तमाड़ विद्रोह हमने जाना था, हो संघर्ष के बारे में भी हम जान पाए थे।
1: बिल्कुल,
0: यही आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत होने वाली है भील विद्रोह 1800 से लेकर 1925 के बारे में।
1: जी हाँ, जैसा कि अंजलि, भील विद्रोह 1800 से 1925 के बारे में अगर हम बात करें तो देश में भीलों की अलग अलग रूपों में चर्चा होती रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: भील खुददार, स्वाभिमानी और अपने हक और पहचान के लिए जान की कीमत भी लगा देने वाले विद्रोही और लड़ाके थे। अंग्रेज शासक भीलों को बर्बर और लुटेरे कहते थे क्योंकि उन्होंने वर्ष 1800 से 1925 के बीच के 125 वर्षों में अंग्रेजों और उनके पिछलग्गू देशी सामंतों के खिलाफ अनेक लड़ाइयां लड़ी। एक दौर में न केवल उनके पास राजसत्ताएं हुआ करती थी बल्कि वे हर तरीके से साधन संपन्न थे। भीलों ने मुगलों, मराठों और राजपूतों के साथ कई बार संघर्ष किए। वर्ष 1550 तक आज के मध्य प्रदेश के झाबुआ का पूरा इलाका भील साम्राज्य था।
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन अकबर ने यहाँ इलाका राजपूतों को दे दिया था ताकि राजपूत भीलों को काबू में रख सके और तभी से भीलों का राजपूतों से संघर्ष शुरू हो गया। राजपूत वंश और मराठों ने भीलों के अनेक समूहों का अपराधीकरण कर उनका इस्तेमाल करना शुरू किया।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, अगर यही बात करें पहला भील विद्रोह 1804 की, तो श्रोता साथियों, पहला भील विद्रोह 1804 में पेशवाओं के खिलाफ हुआ था। भारत में अब अंग्रेज आए तो ज्यादातर सम्मांत उनके आगे नतमस्तक हो गए।
1: जी हाँ,
0: नतीजन अंग्रेज राजपूत सामंतों के संरक्षक हो गए। भीलों ने जब संगठित रूप से खान देशों के सम्मंतों पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने राजपूतों की सेना के साथ भीलों से युद्ध कर उन्हें खदेड़ दिया। बाद में यही संघर्ष भील बनाम अंग्रेज संघर्ष में बदल गया, इसलिए इसे खान देश विद्रोह का नाम भी दिया गया है। इस विद्रोह से प्रेरित होकर भीलों का विद्रोह व्यापक होता चला गया। 1825 में इसने सतारा की सीमाएं लांग ली और 1831 तक अविभाजित मध्य प्रदेश के वनाचल झाबुआ क्षेत्र में फैलता हुआ मालवा तक आ गया।
1: बिल्कुल अंजलि, इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा विस्तृत शोध पर आधारित अपनी पुस्तक भील विद्रोह संघर्ष के 125 साल में लिखते हैं कि कलकत्ता गजट नामक अखबार में 1 नवंबर 1804 को एक समाचार छपा था।
0: जी बिल्कुल,
1: जिसमें लिखा गया था कि भील एक बहादुर कौम है। इस अखबार में 16 फरवरी 1809 में लिखा गया कि मध्य भारत के जितने भी दर्रे हैं उनमें से बड़वानी को छोड़कर सभी दर्रों पर भील मुखियाओं और अरबी लोगों का नियंत्रण है। अंग्रेजों ने जब जमीनों की पैमाइशी शुरू की तो पढ़े लिखे विशेष तबकों के लोगों ने ज्यादातर जमीनों का स्वामित्व अपने नाम करा लिया। जो कम पढ़े लिखे लोग थे, या हम कह सकते हैं कि जो कम स्वामित्व वाले थे, उन्हें कोई खास जानकारी न थी। ज्यादातर हम कह सकते हैं कि जो हमारे आदिवासी भाई थे वो भूमिहीन रहे हैं, वे खेती किसान के बजाय गाँव की चौकीदारी करते रहे। वर्ष 1857 की आजादी की जंग के बाद टंट्या भील एक बड़े भील नायक बनकर उभरे। उन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: 1857 के दौर में भारत के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश, विशेषकर पूर्वी एवं पश्चिम निमाड़ तथा मालवा क्षेत्र अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे। अंजलि, टंट्या भील को कुछ विश्वस्त लोगों के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
0: जी बिल्कुल,
1: उन्हें इंदौर में ब्रिटिश रेजिडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें सख्त पुलिस सुरक्षा में जबलपुर ले जाया गया, जहां उन्हें भारी जंजीरों से जकड़ कर जबलपुर जेल में रखा गया। सत्र न्यायालय जबलपुर में उन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुनाई गई और फिर 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई। फांसी के पश्चात इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर पाताल पानी रेलवे स्टेशन के नजदीक आसपास के गांवों में विद्रोह भड़कने के डर से चुपचाप रात में उनके शव को फेंक दिया गया। इस स्थान को आज टंट्या भील की समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है।
0: जी बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी, ये हम जान पाए भील विद्रोह 1800 से लेकर 1925 के बारे में। आगे हम जानेंगे संताल विद्रोह 1855 से 56 के बारे में, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि गीत से पहले भील विद्रोह के बारे में जाना, यहीं बात करें संताल विद्रोह की, तो श्रोता साथियों, संताल विद्रोह यानी संताल हुल झारखंड के इतिहास में होने वाले सभी आंदोलनों में संभवतः सबसे व्यापक और प्रभावशाली था। ये वर्तमान झारखंड के पूर्वी क्षेत्र जिसे संताल, परगना, दामने कोह, भागलपुर व राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, में 1855 से 56 में घटित हुआ था। यह क्षेत्र झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी समूह संतालों का निवास स्थल था। संतालों के आक्रोश का प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटिश काल में साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासन दोनों ही संतालों का शोषण करते थे। दीकू यानी कि बाहरी लोगों तथा व्यापारियों द्वारा संतालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50% से लेकर 500% तक ब्याज वसूले जाने का उदाहरण मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: चूंकि आदिवासी लोग जो थे वो इन सारी चीजों को लेकर अधिक जानकार नहीं थे, इसलिए उनसे जालसाजी कर तय दर से अधिक ब्याज वसूलना व यहाँ तक कि उनकी जमीनों को भी हड़प लेना आम बात थी। जब वे ऐसी शिकायत लेकर प्रशासन या पुलिस के पास जाते तो भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी।
1: जी हाँ।
0: इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल लाइनें बिछाने के लिए बड़ी संख्या में संतालों को बेगार मजदूरों के तौर पर बताल भर्ती किया। इस घटना ने संताल विद्रोह के तत्कालीन कारण का काम किया।
1: बिल्कुल अंजलि, इन्हीं अत्याचारों की पृष्ठभूमि में संथालों ने दरोगा महेशलाल दत्त एवं प्रताप नारायण की हत्या कर दी और इसी के साथ संताल हुल की चिंगारी उठी। 30 जून 1855 को भगिनी डीह में 400 आदिवासी गांवों के लगभग 6000 आदिवासी इकट्ठा हुए और सभा में ये घोषणा हुई कि बाहरी लोगों को भगाने और विदेशियों का राज समाप्त कर सतयुग का राज स्थापित करने के लिए विद्रोह किया जाए। नारा दिया गया, आजादी के लिए हथियार उठा लो। विद्रोहियों ने ब्रिटिश दफ्तरों एवं संस्थानों, थाना, डाकघरों व अन्य सभी ऐसे संस्थाओं पर हमले शुरू कर दिए जिन्हें वे गिर जनजातीय प्रतीक मानते थे। भागलपुर और राजमहल के बीच सभी सरकार

0: सेवाएं ठप कर दी गई। सरकार को संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। आखिरकार इस विद्रोह का दमन कर दिया गया।
1: जी बिल्कुल।
0: आगे चलकर अंजलि, सरकार ने संथाल लोगों के लिए पृथक संथाल परगनास बनाकर शांति स्थापित की। दुमका, देवघरा, गोड्डा व राजमहल उप जिले बनाए गए। इस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर यहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश व उनकी गतिविधि को नियंत्रित किया गया, जो आदिवासियों की एक पुरानी मांग थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया ताकि आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाई जा सके।
1: जी बिल्कुल। यही बात करें जागृति जी, मुंडा विद्रोह 1885 से 1900 के बारे में, तो श्रोता साथियों, उल गुलान का अर्थ है असीम कोलाहल, यानी कि 20 वर्ष के बिरसा मुंडा ने इसकी शुरुआत की थी।
0: जी हाँ।
1: यह वह आंदोलन था श्रोता साथियों, जिसे आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए शुरू किया था। 1895 में शुरू हुई इस विद्रोह ने अंग्रेजों को बिरसा के पीछे लगा दिया। गिरफ्तारी और रिहा का दौर चला, लेकिन एक बार बिरसा जेल से छूटे तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया।
0: जी हाँ।
1: लोक चर्चा के अनुसार 1899 में क्रिसमस के दिन करीब 7000 पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुई और विप्लव्य की घोषणा की, जो जल्द ही घूटी, तमार, बसिया और रांची तक फैल गया।
0: बिल्कुल।
1: 5 जनवरी 1900 तक सारी मुंडा जमात ने हथियार उठा लिए, बहुत से पुलिस वाले मार दिए गए और करीब 100 इमारतों में आग लगा दी गई। अबुआ दिसून अर्थात अपना राज का नारा गूंज उठा। इसने लड़ने के लिए अंग्रेजों से सेना भेजी। साथ में बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया। डुम्बारी पहाड़ी पर वैसा ही एक कांड ब्रिटिश सेना ने किया, जैसा जलियावाला बाग के समय हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए। बिरसा के करीबी किसी व्यक्ति ने खबरची का काम किया और उन्हें पकड़वा लिया। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास उनकी गिरफ्तारी हुई और 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में कारागार में बिरसा मुंडा की मौत हुई। बिरसा की मौत के बाद उल गुलान आंदोलन ठंडा पड़ गया।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ संविधान निर्माण प्रक्रिया और आदिवासी को लेकर हम बात करें तो साथ ही औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इस प्रक्रिया और साहसिक संघर्षों के बावजूद सच यह भी है कि राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों के नेतृत्व और भूमिका को वो तवज्जो नहीं मिले जिसके वे हकदार थे।
1: जी बिल्कुल।
0: इस उपेक्षा को संविधान बनाने की प्रक्रिया में भी देखा जा सकता है अंजलि, और इसके पीछे एक तर्क यह भी हो सकता है कि चूंकि आदिवासी समुदाय जमीन पर निजी नियंत्रण में विश्वास रखने वाला समाज नहीं है और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमेशा से अन्य समाजों से अलग रही है,
1: जो
0: शायद इसीलिए भी एक केंद्रीकृत विधान के निर्माण से उन्हें दूर रखा गया। इस विषय में प्रमुख आदिवासी विद्वानों का क्या सोचना था, इस बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, एक तरफ जहां देश की आजादी के आंदोलन में मुख्य आदिवासी स्वर लगभग अनुपस्थित थे, वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन में अछूतों और अल्पसंख्यकों के सवाल ज्यादा तवज्जो पाने लगे थे। भारत, राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा उस दौर में चलते रहे समाज सुधार आंदोलन ने भी इस आंदोलन को राजनीति के केंद्र में स्थापित किया। संविधान के प्रारूप बनाने की पहल वर्ष 1895 में भारत का संविधान विधेयक 1895, जिसे स्वराज बिल भी कहा जाता है, के साथ शुरू हो चुकी थी।
0: जी हाँ।
1: इसे किसने बनाया था, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस प्रारूपों में भी दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए किसी व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया था। इसमें संसद के 2 सदन स्थापित करने की बात की गई थी, लेकिन वंचित तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इतना ही नहीं, संसद जिन विषयों के लिए कानून बनाने के लिए पात्र मानी जा रही थी, उसमें भी दलित और आदिवासी समुदाय के लिए विशेष प्रावधान नहीं थे।
0: बिल्कुल अंजलि, इसके बाद वास्तव में पृथक निर्वाचन की मांग से अनुसूचित जाति या छुआछूत के प्रभावित तबकों के मुद्दे न केवल राजनीतिक के केंद्र में बल्कि आजादी के आंदोलन में भी प्रखर ढंग से उठाए जाने लगे।
1: जी बिल्कुल।
0: साथ ही संविधान निर्माण के दौरान हुई बहसों के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अपवर्जित और अंशतः समाविष्ट क्षेत्रों के बारे में हाल की संवैधानिक चर्चाओं ने भारत के मूल निवासियों की स्थिति के प्रति ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। इनकी संख्या लगभग 1.30 करोड़ है। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि ये मूल निवासी एक ऐसे देश में असभ्य शब्द का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति के संदर्भ में हुआ, असभ्य अवस्था में बने हुए हैं, जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की डिंग हांकता है। न केवल वे असभ्य रहे, बल्कि उनके कामों को जरायम पेशा कहकर वर्गीकृत किया गया।
1: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने संविधान और आदिवासी को लेकर बहुत अच्छे से ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से भील विद्रोह हुआ, संताल विद्रोह के बारे में जाना, मुंडा विद्रोह के बारे में जाना, हम जैसा कि जान रहे थे संविधान निर्माण प्रक्रिया और आदिवासियों को लेकर, तो इसी विषय पर अगले रविवार को हमारी फिर से मुलाकात होगी नई बातों के साथ में।
0: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुंद हूँ था का?
1: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुंद, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे, न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे, जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
6: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
7: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
8: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि श्रोता साथियों, हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे नई नई व्यंजन विधियों को लेकर ढेर सारी बातें रहती हैं। तो आज भी श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी ही व्यंजन विधियों को हम जानेंगे, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो उसी दस्तूर को निभाते हुए आइए सुनते हैं श्रोता साथियों कार्यक्रम के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आज रविवार का दिन है और इसी दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर हाजिर होते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे अलग अलग ढेर सारी व्यंजन विधियों को लेकर ढेर सारी बातें रहती हैं। तो आज भी श्रोता साथियों ऐसी ही व्यंजन विधियों को लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे कार्यक्रम से समुदाय के साथी जुड़ रहे हैं, उनके माध्यम से हम जानेंगे कि हम पहले के समय में कौन कौन से ऐसे पारंपरिक व्यंजन विधियों को बनाते थे जो कि श्रोता साथियों हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती थी। हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी सब्जियां थी जिन्हें हम सुखाकर बाद में भोजन बनाते थे और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम बिना तेल के पका सकते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती है। इन्हीं ढेर सारी बातों को जानेंगे श्रोता साथियों। तो आइए साथियों, सुनते हैं हमारे समुदाय साथियों की बातों को।
1: जय गुरु।
2: जय गुरु।
1: आपने हूँ नाम है
2: बबली बेल।
1: के रहो
2: चखुड़िया नाथा।
1: तो आप अपना घर परिवार बल्ले से खावानू बनावो हो ने पहले ना टाइम में नवड़ी ना टाइम में आपने दिखी रहो के खावानू बनावा में घणो फर्क आवी गयो है। पहले आपने घणा कनी एवी चीजे काम में लेता होता जे आपने बाप दादा खाता होता था। नवड़ी ना टाइम में ये चीजे बदलाई गई है ने आपने सब भूली गया हो। तो फिर तक एनी चीज ने याद अलावा बल्ले आजे आप मने कई एवी चीज बताड़ोगा जे आपने भाई बहनों ने घेरे बनावी जुए नी पोषण तक भरपूर रहे।
2: सही बात है। पहले ना जमाना में था हूँ करता था हुकीली बाजी हूँ करता पहलकी थे अपने ये कमाई कर देता हूँ कमाई कर देता है ना बारह में मक्की थोड़ी थोड़ी थ जाती मोटी तेने में रजनी बाजी दिमड़ानी बाजी ये हम रांधीन खाता ने पसाव था तो आ टीमें डुड्डी थी जाती इन्हीं टीमें हम पसाव करता ये कासरा लागता पहलखा था कासरा नहीं डेरी होती हम रांधीन खाता मैंने पसाव बाद में हम करता ये कासरा पाके जाता एना पाके जावा दे हुकुबता हम सीरे हुकवी ने बस है मोटी बांधे मिलता तेने बस है जो हुका तो बस होना ना तेना खाता रजनी बाजी हुकुबता पवाड़े नी बाजी हुदी हुकुबता हम खाटी भिंडी हुदी हुकुबता दड़े न बस है रजनी बाजी में हम दड़े हुकवीली हाथे खाता।
1: तो आज रजननी भाजी ढीमड़ानी भाजी आप बताड़ी रहो तो आ आपणे हरते बनावी शको केम के अवड़ेना टाइम में जे नवी नवी बाई आवी है એણન તો આ સબ્જી બનાવતા આવડતી નથી ને એ દેખીને એમ સોચે કે આન મેં હું આ તો સારોડો હોય તો એણને હરતે આને ખાવું જોઈએ ને હરતે બનાવવું જોઈએ
2: આપણે બતાડવું પડે ભાઈ અમે પહેલાના જમાનામાં તો એ ભાજી ખાતા એ દીમડાની ખાતા હુકવીને ખાતા કાસરો રાંધીને ખાતા એ બી હુકવતા તો ઉનાળાના રાંધીને ખાતા તો વેસા તો બીજી મેર હું બહાર હું ભાજી લાવી નહીં પડતી સોમાય ના કેમ કે દસ્ત લાગે જાય એમ કરે ને તે હુકીશ ખાતા પછી ફેર થઈ જતી असली सोमा हमने पेलो गैडी था जा भाजी इतरे दस तने लागे तरह मोती बनावे खाता बस है तो हुकवीली भाजी खाता ना वो इंजन बताड़वे नी भाई ये अमो वस्तु खाते था
1: हरते बनावा है
2: ते हु करें बना दे अपने खेतर में बनावी पड़े ते ने वावी पड़े बीज राखो पड़े
1: हां ने पण घरे लावीन बस है हरते ने काप धोव मसाला हु ना क ई सब बताड़ो हरते बनावे
2: ती सब मसालो नाखो पड़े यो आपण घर होस बनावे नो दणाल घेर हाँ सब आपोड़कन धना पाके घेर हंगलो आपोड़ बाजी साग बाजी भी आपोड़ घेरेस ने अजु वेसाती भी नहीं लावता हम आमना भी बिंडा उनाले ना बना दी जा आमना भी है बिंडा है रेंगना है सिहियाला टाइम में ते रेंगना ने यू ते आमना नो सोपेलो यू रे ने पासा वहाँ ही लगा कमाई जा जा मोटा मटर गोभी ने ये पेला हूँ गाजर
1: તમે વતાડો મારે હું શું કરવું પડેગા શરૂઆત થી વતાડો હું શું લેવું પડેગા હું શું નાખવું પડેગા સબ વતાડો
2: એને સબ નાખવું પડે મસાલો નાખવો પડે ઘેર હો
1: પેલે રજન ની ભાજી લાવું મો ઘરે એને શું કરુંગા મો
2: ધોઈ દોડવી પડે પેલતે લાવે લાવે ને ધોવી પડે એને ધોવે ને પછી નાની નાની એને વાડવી પડે વાડે ને પછી આંડલી માં સાપડ કોરી રાંધવી હોય તો તેને પછી આપણે તેલ નાખે ને કોરી ફેરવે ને પછી મરસ મસાલો સબ વાટે ને પછી નાખવું વે તેન માં એમ જ નાખવું વે ખાટી ભીંડી નાખવી વે નાખવી ને વે આપણે ઘેર માં દૂધણો ને વે તે આપણે ખાટી ભીંડી ઉદી ના ખાઈ શકે એન માં
1: હોવે ને અગર મારે કોરી ને બનાવી હોવે તો
2: તે આપણે દહી દૂધણો વે કે તે દહી નાખી દો
1: ફાટે
2: કેવી રીતે
1: બતાડો હરતે બનાવું
2: એને તો

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, जो व्यंजन विधियाँ रही और जो गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय एक नई व्यंजन विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाइयों ने बोनो जईवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनों रिश्तों है जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे है। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हा? या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान